दुख हुई दुखारी, तिनहिं बिलोकत पातक भारी। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से विमुख कर अच्छे मार्ग पर ले जाए, अपनी सामर्थ्य भर सदैव मित्र के हित के लिए कार्य करे और विपत्ति के समय 100 गुना अधिक स्नेह करे। जो सामने तो ठुकुर सुहाती करता है, कोमल प्रिय वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। श्री राम के श्रीमुख से मित्र और कुमित्र के लक्षण सुनकर सुग्रीव के मन में वैराग्य का संचार हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर आजीवन श्रीराम का सेवक होकर रहने की कामना प्रकट की।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 268, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं मानसिक शांति के बारे में। आज के तेज तर्रार और तनावपूर्ण जीवन में मानसिक शांति प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मानसिक शांति का अर्थ है मन का संतुलित, शांत और सकारात्मक रहना, जो एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए अनिवार्य है। आइए बात करते हैं मानसिक शांति के मुख्य उपाय।

कौन कौन से हैं, ध्यान और प्राणायाम। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। शांत स्थान पर आरामदायक स्थिति में बैठकर श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना तनाव को कम करता है। ओम मंत्र का जाप भी मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। योग और व्यायाम। नियमित रूप से योग के आसन करें। हल्का व्यायाम या वॉक करने से शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो मूड को बेहतर बनाते हैं। पर्याप्त नींद। हर रात 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लें। अच्छी नींद तनाव को कम करने और मन को रीकेयर करने में मदद करती है। सुबह पार्क में टहलना, बागवानी करना, सूर्योदय या सूर्यास्त देखने से मन शांत होता है। उपायों के बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। संगीत था आनंद मिलिंद का, गीत के बोल थे समीर के, फिल्म का नाम था अधर्म। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मानसिक शांति प्राप्त करने के उपायों के बारे में। अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलें। हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपनी उपलब्धियों को पहचाने और दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। दिन में कुछ घंटे फोन बंद रखें। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। जब मन परेशान हो तो विचारों को डायरी में लिखें, इससे मन का बोझ हल्का होता है। खाने पीने सोने काम करने का समय निर्धारित होना चाहिए। संयमित जीवन शैली मानसिक शांति का सबसे बड़ा उपाय है। बात करें, बात करने से ही बात बनती है। अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार के सदस्यों से, काउंसलर से अपनी समस्याएं साझा करें, इससे राहत मिलती है।

कसमें वादे, इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और अमित कुमार को। दोस्तों, मानसिक शांति किसी एक उपाय से नहीं बल्कि नियमित अभ्यास और संयमित जीवन शैली से प्राप्त होती है। इन सरल उपायों को अपनाकर आप तनाव और चिंता से मुक्त होकर एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

0: हसीना मान जाएगी। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गीत के बोल थे अख्तर रोमानी के। दोस्तों, दूसरों की मदद करना मानवता का सबसे महान गुण है। जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो न सिर्फ उसे खुशी मिलती है बल्कि हमें भी सच्चा सुख और संतोष महसूस होता है। मदद करने से समाज में प्यार, सहयोग और एकता की भावना बढ़ती है, जो सुसंगत समाज के लिए निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। परोपकार करने के लिए केवल पैसे देना जरूरी नहीं है, हम अपनी शारीरिक शक्ति से, बुद्धि से या अच्छे व्यवहार करके भी लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे किसी को काम में मदद करना, तकलीफ में दो अच्छे शब्द बोलना। मदद करना सेवा करने के समान है, हम तन मन धन से कर सकते हैं।
1: देखो रम पम पम

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में। संगीत था राजेश रोशन का, गीत के बोल थे अमित खन्ना के, फिल्म का नाम था बातों बातों में। दोस्तों, दूसरों की मदद करने से व्यक्ति अवचेतन रूप से स्वयं को खोज पाता है और स्वयं को बेहतर के लिए बदल सकता है। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता से हमें एक नई दुनिया देखने का अवसर मिलता है जिसे हमने पहले नहीं देखा। जब हम किसी कठिनाई में फंसे व्यक्ति की सहायता करते हैं तो उससे उसे आशा और सहारा मिलता है। निस्वार्थ मदद से समाज में करुणा, एकता, सहानुभूति और सहयोग की भावना मजबूत होती है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है और इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने का स्वभाव बनाए रखना चाहिए।

अपने दोस्त गुलशन को दें इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार प्रभात।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
3: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
6: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है।

0: केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार

0: हुए इस महोत्सव में लैवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
1: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा इंडोनेशिया एक्ट

पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
1: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मरतबा इसराइल पर मिजाइलों से हमले किए हैं। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरव ने इटली के फेलियो कोबली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नाफिज करेगा जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है। सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निफाज के लिए आज एक मफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी। इस मफाहमतनामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदु अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे। इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मुसावी और हिफ्जान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है। मगरबी बंगाल में ABPMJAY के निफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफीदीन को भारी भरकम सेहत इखराजात से माली तहफ़ फराहम होगा जबकि मुल्क भर में हिफ्जान सेहत के फवायद के इम्कानात में बिला रुकावट मदद मिलेगी। इससे मेयारी और सस्ती हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्जान सेहत का निज़ाम भी मजबूत होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAYPM अहल मुस्तफीदीन को सानवी और आला दर्जे के अस्पताल में दाखिल होकर इलाज के लिए फी खानदान हर साल 5 लाख रुपए तक सेहत बीमा फराहम करती है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी की है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद कराया जाएगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना दरख्वास्त नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: एनटीए की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक ये इम्तिहान भारत के 551 शहरों में और मुल्क से बाहर 14 शहरों में दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर तरीके कार के तहत करवाया जाएगा। एनटीए ने वाजे किया है कि इम्तिहान के शहर के ताल्लुक से जारी की गई स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है बल्कि इसे उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में मुतला करने के लिए जारी किया गया है जहां उनके इम्तिहान का सेंटर वाक़ है। एनटीए ने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी किए जाने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के बारे में मालूमात उसकी बाकायदा वेबसाइट से हासिल कर रहे हैं। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी इम्तिहान का इनेकाद 3 मई को कराया गया था जिसे बाद में पेपर लीक होने के इल्जामात के सबब 12 मई को एनटीए की जानिब से मनसूख कर दिया गया। फिलहाल सीबीआई में इस मामले की जांच कर रही है और

0: 21 जनवरी को ये इम्तहान दोबारा मुनक़िद कराया जाएगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन की 3 रोजा जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज हरियाणा कानून साज असेंबली की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंद्र कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर के प्रिसाइडिंग और नायब प्रिसाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टैगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेज़ी से उसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी 23 जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिविजनल 100 से ज़्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज़ को पहुँचा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़्यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम माहौलियाती तहफ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदामात और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है, दलदली ज़मीनों, मैंग्रोव्स और साहिली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आलूदगी को कम करने और दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरियाओं के माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने के मकसद से साल 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: साल 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी ने उससे बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वजारत खारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक क्लीदी सतून है, जबकि इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगोनियो ने कल नई

0: ने कहा है कि इसराइल के कई इलाकों में ईरानी हमलों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि इसराइल की जानिब से बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुजाकरात मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों को निशाना बनाया जा सकता है। शुमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में आज एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिससे खित्ते में कई हफ्तों से जारी जंगबंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए, जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम पॉइंट के तौर पर शनाख्त की थी, जिसने इतवार को बेरूत के दाहिया जिले को निशाना बनाया था। लेबनान के सेहत से मुतालिक अहलकारों का कहना है कि बेरूत में हमले से 2 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने अपने हवाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तेहरान ने इस ऑपरेशन को मजाहमत की एक मुनजम कार्रवाई करार दिया है। ईरान की मुसल्ला अफवाज के कमान सेंटर खातिमुन्नबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने खबरदार किया था कि लबनान की राजधानी पर कोई भी हमला सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ होगा। आबादी वाले मुकामात के बजाय मखसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर ईरान की फौजी क्यादत ने यह इशारा दिया कि वह खित्ते में पायदार अमन की खातिर माहिदे के लिए जारी मुजाकरात को खतरे में डाले बगैर इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जर्व ने इटली के फेलियो कोबिलियो को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मर्तबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फेलियो को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 29 साल खिलाड़ी ऐसे पहले जर्मनी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1937 में हेनर हेंकल के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोबिली भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास JCM की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वजीर खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत नेपाल मिलकर एक साथ काम करने के ख्वाहां, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारतीय सनती तरक्की योजना भव्य पोर्टल का आज करेंगे इफ्तिताह। इस इकदाम का मकसद भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस खबर को प्रताप ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीद नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरव ने इटली के फेलियो कोबिल को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है और इसके काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। साल 2026 में इस दिन की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अर्थात योग के माध्यम से स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली की ओर बढ़ना। इस तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव का कैसे प्रबंधन किया जाए और कैसे संतुलित जीवन शैली अपनाई जाए, ये हम सभी के लिए एक बड़ा सवाल रहता है। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध कार्डिक सर्जन और योग गुरु डॉक्टर मोहित शर्मा। सर नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: सर सबसे पहले, आज के दौर में तनाव जो है जिंदगी का हिस्सा ही हो गया है, ऐसे में योग जो है हमारी सेहत को कैसे प्रभावित कर सकता है?
1: देखो, दो इसमें सब्जेक्ट है, पहले है तनाव और दूसरा सब्जेक्ट है योग। पहले हम तनाव को समझ लेते हैं, उसके बाद हम योग को समझ लेते हैं।
0: जी,
1: तनाव बेसिकली एक सिंपल सा फिनोमिना है। तनाव का सामान्य से अर्थ अगर माना जाए तो एक लिमिटेड टाइम में एग्जीक्यूटिंग द कंप्लीट वर्क इज बेसिकली तनाव। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे बच्चे जब एग्जाम देते हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि आप उनसे पूछो बेटा पेपर कैसा हुआ, कि मैं 90% मार्क्स आएंगे, और जब मार्क्स आते तो कितने आए साहब, 70%। तो ये 20% क्या है, तनाव। और स्ट्रेस को थोड़ा डिफाइन करें कि आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आपको 24 घंटे में जो टास्क दिए जा रहे हैं आप उनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो कहलाता है तनाव, कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, अब जो मनस्थिति होगी वो तनाव। तो ये बात समझ में आ गई कि हम तनाव को कैसे अपने हिसाब से परसेप्ट कर रहे हैं। नाउ इसका प्रबंधन कैसे हो और इसका हमारे पर क्या इम्पैक्ट है। देखो, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन से बीमार पड़ते हैं। मैं उनको एक ही चीज कहता हूं कि भोजन की तुलना में तनाव एक ऐसा बिंदु है जिससे हम बीमार पड़ते हैं। जैसे अगर आप तनाव में भोजन करेंगे तो भोजन विष है, लेकिन अगर आपका मन मस्त है, आनंदित है, तो आप विष भी खाएंगे तो वो बिल्कुल अमृत है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ये बात मैंने ओवर एग्जेगरेटेड होकर के कही है, तो कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
0: जी।
1: आज का युवा, 25-30 साल का युवा हार्ट अटैक को सफरर हो चुका है। हम सब जानते हैं कि अभी यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। बीइंग ए कार्डियक सर्जन, वी आर ऑपरेटिंग सो मेनी कार्डियक सर्जरीज, इवन बाईपास सर्जरीज इन द यंग एज। आप अगर कभी जगन्नाथपुरी गए हो, और बहुत सारी ऐसी जगह भारत में जहां पर लोग 100-100 साल की एज अटेन करते हैं और वो मजे से घी और चूरमा खाते हैं, देखे हैं आपने ऐसे बहुत सारे पुजारी होते हैं जो घी चूरमा खाते हैं, और आराम से उनका एज आप पूछोगे तो क्लेम करेंगे 92 है साहब, 95 है, और ये और बताएंगे हमको तो याद भी नहीं है कितना है। हाउ इट्स पॉसिबल? आंसर है, वो तनाव मुक्त जीवन में है। अब वो घी खाएं, कुछ भी खाएं, उनके लिए कोई कोलेस्ट्रॉल, कभी उन्होंने ना तो लेबोरेटरी का फेस देखा, ना कभी उनको जाने की आवश्यकता। रिसेंटली ऐसा एक NIA ने अपने जयपुर में, उन्होंने एक रिसर्च भी किया इस बात को लेके कि क्या वास्तव में घी या तेल का हमारे शरीर पे इम्पैक्ट है। अगर मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे बात करूं तो डेफिनेटली दो प्रकार के जो फैट्स हम जानते हैं, अनसैचुरेट फैट, सैचुरेट फैट, जिनका इम्पैक्ट भी हम जानते हैं। लेकिन इस इम्पैक्ट के बावजूद अगर आप वही फैट दो अलग अलग व्यक्तियों को खिलाओ, एक व्यक्ति जो तनावग्रस्त है और एक व्यक्ति जो मस्त है, आप देखोगे जो तनावग्रस्त व्यक्ति है वो केवल घी सूंघ के ही उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, और एक मस्त व्यक्ति को घी का चूरमा खा के भी अरेस्ट नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ, स्ट्रेस। अब इसमें एड ऑन कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि योग का क्या इसमें महत्व है।
0: जी।
1: योग बेसिकली जीवन जीने की उत्तम पद्धति है, पहली बात तो ये कोई ऐसा चिकित्सा विधा नहीं है। हम ये माने कि अब किसी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो गई और वो योग करने लगा है तो अब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट तो आएगा, लेकिन क्या मेडिसिन का ये सब्स्टिट्यूट है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो योग को पहले जानते हैं समग्रता, नंबर वन, इट्स अ कंप्लीटनेस, होलनेस। और इस बार की जो थीम भी है कि एजिंग के ऊपर है, इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाने वाला है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि अच्छा आपका आयुष्य हो इसके लिए योग का क्या इम्पैक्ट है। तनाव जुड़ा हुआ है मन के साथ, और योग का सायुज्य या जोड़ है हमारे मन और श्वास के साथ। अगर मैं आपसे कहूं आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध किस में आएगा, आपकी मनस्थिति है क्रोधी अवस्था, या ईर्ष्या, वो क्या है, आपकी मनस्थिति। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच, मस्ती, आनंद, सुख, दुख, ये सब इमोशंस हैं, और इन इमोशनल डाइवर्सिटी को जो ओरिजिन दे रहा है दैट इज योर माइंड या मन, और इसके पीछे है आपकी बुद्धि जो इनको कंट्रोल करती है कि ये सही है या ये गलत है। योग के माध्यम से, जैसे हम कहते हैं योग की अगर हम पहली परिभाषा लेते हैं, महर्षि पतंजलि योग सूत्र

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है समाचार तरंग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति समाचार तरंग में आप सभी श्रोताओं का स्वागत।

0: में लिखा गया है अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन इज इक्वल टू योग. अगर आपका एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ है देन आपको ये सारा जिसको हमने कहा कि आपकी मनस्थिति को भी आप बड़े अच्छे से हैंडल कर पाते हो. योगी का तात्पर्य और एक जिम्नास्टिक्स के बीच का भेद, जैसे है ना, आपने अभी देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल आसन में थोड़ा सा शारीरिक प्रदर्शन करके उसको योग का नाम दे लेते हैं, बट ऐसा एग्जैक्टली है नहीं. अगर ऐसा होता तो एक जिम्नास्टिस्ट को हम योगी क्यों नहीं कह लेते. तो योग का संबंध है मन के अवस्था के साथ में. अगर मन के साथ में उसका कनेक्शन ना हो तो फिर वो जिम्नास्टिस्ट भी है और वो जिम करने जैसा भी है. फिर तो आप अपना शारीरिक कसरत करो. लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक डेड बॉडी को, एक लाश को आपने कभी मुस्कुराते देखा है? या कभी आपने कहा हो अरे वाह कितनी सुंदर डेड बॉडी है? कभी किसी डेड बॉडी के लिए आपने सुंदर शब्द यूज किया है? नहीं. या कभी आपने ऐसा कहा है कि ये लाश मुझे देखकर ईर्ष्या क्यों कर रही है? नहीं. इसका अर्थ ये हुआ कि एक लाश को जो जीवंत बनाता है वो उसका प्राण, और प्राण का संबंध है श्वास के साथ, और श्वास और प्राण का जो सही केमिस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं वो कहलाता है योग. जब हम योग की बात करते हैं तो अष्टांग की बात करते हैं पूरा, है ना. सबसे पहला जिसके अंदर हम कहते हैं यम, सत्य अहिंसा हस्तया परिग्रह ब्रह्मचर्य. दूसरा नियम, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान. जब हम यम और नियम में है ही नहीं और हम खाली अपने फिजिकल एक्सरसाइज के आधार पर कह दें ये योग है, तो उसकी समग्रता नहीं हुई. आसन एक बहुत छोटा सा पार्ट है. अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, वृद्ध है, शरीर के स्तर पर अक्षम है, वो योग कर सकता है, वो योगी हो सकता है, क्योंकि उसने अपने मन को हैंडल करना जाना है. तो मन को हैंडल जब आप करना सीख जाते हैं आप तनाव प्रबंधन को जान जाते हैं. तो यहां पर अगर आप योग को समझ लेते हैं तो जीवन में तनाव प्रबंधन जब आप समझ जाते हैं तो आप अपनी सारी बीमारियों को आप इजीली हैंडल कर लेते हैं.
1: सर अभी आपने मानसिक स्पष्टता की और शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन सारी बातें की, तो क्या इसमें मन ही सर्वोपरि है, मानसिक स्थिति? और आपको क्या लगता है कि आजकल के जीवन में सबसे ज्यादा ऐसे कौन से कारण हैं कि लोग तनाव में रहते हैं?
0: अच्छा,
1: और क्या इसका दिल पर भी बहुत असर पड़ता है?
0: ऑब्वियसली ये तो बहुत महत्वपूर्ण है. अच्छा चलो इसको भी हम एक प्रश्न से ही सॉल्व करते हैं. आपके साथ जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपका चश्मा सामने पड़ा है लेकिन आप चश्मा ढूंढ रहे हैं, मेरा चश्मा कहाँ गया? या आपकी गाड़ी की चाबी बिल्कुल आपके सामने पड़ी और आप चाबी को ढूंढ रहे हैं,
1: नहीं आ रही.
0: जबकि अगर आपकी आंखें देख सकती तो आपको आपकी चाबी नजर आती, और अगर आपकी आंखें और अच्छे से देख पाती तो आपका आपका चश्मा भी नजर आता. ऐसा क्या होता है कि हमारी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, हमारा पूरा शरीर एक्टिव है लेकिन फिर भी हमें सुनाई नहीं दे रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है? द रीजन इज आवर माइंड इज नॉट कनेक्टेड विद द सेंसेस. जैसे अगर हम इसको क्लासिफाई करें, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है कि हमारे एग्जिस्टेंस को हम नहीं समझते, हम केवल शरीर को समझते हैं कि मैं यह शरीर हूं. लेकिन इस एग्जिस्टेंस में पहला स्तर है आपका शरीर, जो अलग अलग आयु अवस्था के ऊपर निर्भर करता है, देश काल परिस्थिति में बदलता रहा है. आप 5 किलो के पैदा हुए, 50, 60, 70 किलो के हो सकते हैं या आगे भी कितने रहेंगे, नोबडी नोज. पहला शरीर, दूसरा है श्वास. अब इस श्वास को समझना वास्तव में योग है. अगर हम इस श्वास को ना समझें तो हमने योग को भी ढंग से नहीं समझा. योग सब जानते हैं, योग का अर्थ है जोड़ना, योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना. तो ये जो श्वास है सारा खेल यही है. जैसे हम आपसे कहें कि आपने इस धरती पर जब आप अवतरित हुए तब आपने पहला कृत्य क्या किया होगा, कुछ लोगों का उत्तर होता है साहब रोए थे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बिना श्वास लिए रो भी नहीं सकते. तो पहला कृत्य तो श्वास लेना था. और जब आप यहाँ से जाएंगे, एक दिन तो जाएंगे ही, लेकिन हमको लगता है कि हम 1000 साल तो हम यहाँ कम से कम है. हर व्यक्ति की गलत फहमी है. तो जब आप जाएंगे, आखिरी कृत्य आपका होने वाला है श्वास छोड़ने का. श्वास लेने और छोड़ने के बीच ये सारा जीवन है. तो समझ के स्तर पे अगर हम श्वास को और बारीकी से जाने तो जीवन में न केवल तनाव प्रबंधन बल्कि जीवन में और बहुत सारी विलक्षणताओं को एक्सप्लोर करते हैं. सही मायने में योग वही है, जीवन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्सप्लोरेशन और विलक्षणताओं को जानना. फिर हमने कहा मन, शरीर श्वास के ऊपर एक मन है. ये मन क्या है? कनेक्टेड है बाहर की दुनिया से, आपकी इंद्रियों से. आपकी आंखें देखने का कार्य तब करती हैं जब आपका मन आंखों से कनेक्टेड हो. अगर मन कनेक्टेड नहीं है तो आपके सामने कोई अच्छा म्यूजिक भी चला दे आपको सुनाई नहीं देगा. जैसे आप गहरी नींद में हो, बाहर शोर हो रहा हो तो क्या सुनाई देता है? नहीं. तो यह कार्य है मन का, इंद्रियों से कनेक्ट होकर के जुड़ना. और इसके विपरीत मन के पीछे है आंतरिक दुनिया, इसको कहते हैं अंतर चतुष्टय, बुद्धि चित्त अहंकार और सेल्फ. तो अब बुद्धि क्या है? मन जो अनुभव कर रही है उसके लिए डिसीजन देने वाला भी तो कोई चाहिए, नहीं तो मन तो क्या है, बेलगाम घोड़ा दौड़ेगा इधर से उधर. बुद्धि इज इंटेलेक्ट.

0: दैट इज कनेक्टेड विद योर नॉलेज और अनुभव के साथ संबंध है बुद्धि का. अगर आप कुछ भी अनुभव करते हैं मन के माध्यम से तो बुद्धि उस अनुभव के ऊपर एक जस्टिफिकेशन देती है. जैसे आपके मन में प्रश्न कहाँ उठता है, प्रश्न मन में नहीं उठेगा, प्रश्न बुद्धि में उठेगा, वो आपको बोलेगा ऐसा बात करना है ऐसा बात नहीं करना है.
1: डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि हम इन सब चीजों को जानते हैं, योग एक शारीरिक अभ्यास है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि हम अपने निश्चय करें, अपने मन के हिसाब से उसे निर्धारित करें. तो ये जो सेट इंटेंशन वाली बात है, उसके लिए इंसान को क्या करना चाहिए?
0: इसमें बहुत सुंदर बात आपने पूछी है और इस बार की योगा थीम भी मैं आपको बताता हूँ. जैसे वेलनेस एंड विजडम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्ट एंड विजडम. बहुत कम लोग जानते हैं कि बुद्धि में और प्रज्ञा में क्या फर्क है. बुद्धि, प्रज्ञा या विवेक, इसमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि जैसे सबको पता है योग दिवस आएगा, सबको पता है योग जीवन के लिए अनिवार्य है, सबको पता है कि योग में बहुत सारी खूबियां हैं और हमें जीवन में अपनाना चाहिए, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता तो है लेकिन वो इस पथ पर चल रहे हैं. जो पथ पर चल रहा है वो विजडम है, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, तो वो विजडम है. लेकिन पता होना ये बुद्धि है. तो अगर मैं कहूं कि यहां इस हॉल में अगर 10 लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, पता सबको है कि योग बहुत अच्छा है, लेकिन उन 10 में से 2 ऐसे होंगे जो इस पथ पर चलेंगे और इसको अनुशासित रूप से जीवन में अपनाएंगे, तो आवश्यक क्या हुआ, विजडम, विवेक, ज्ञान या प्रज्ञा. अब ये आए कहां से, इसके लिए सबसे पहला जिसको हम कहते हैं अनुशासन, दैट इज सिंपली डिसिप्लिन.
1: सर, आपको एक बतौर हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन होने के नाते क्या लगता है कि तनाव से ही युवाओं में आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं?
0: बिल्कुल, सबसे पहला बिंदु तनाव और दूसरा है दिनचर्या. दिनचर्या अगर आप आज के युवा की देखोगे तो आप देखो उनका उठने का समय, खाना खाने का समय, ब्रेकफास्ट का समय, सब कुछ गड़बड़ हो चुका है. इस पूरी प्रकृति में ह्यूमन बीइंग के अलावा सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है. जब आप अपनी रिदम को छोड़ते हो तो आप अपनी दिनचर्या को गड़बड़ा देते हो. इस बार की जो थीम है वो यही है कि तुम समग्रता से अपने जीवन को आनंदित तरीके से जी पाओ.
1: हम ये जानना चाहते हैं, एक आप आसान से कुछ क्या हमारे श्रोताओं को कोई आसन या कोई श्वास क्रिया ऐसी बता सकते हैं जिससे वो थोड़ा तनाव मुक्त हो जाए?
0: योग के लिए सबसे पहला अभ्यास, और अभ्यास के लिए भी सबसे पहला, अगर आपके भीतर एक अर्जुन है, यू विल डेफिनेटली फाइंड वन कृष्णा. अगर आपके भीतर अर्जुन नहीं है तो आपको कृष्ण कभी नहीं मिलने वाले. तो जिज्ञासा एक विद्यार्थी का पहला लक्षण, पहली जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उपयुक्त और उचित शिक्षक योग में. फिर आपको यहाँ पर फोर्सफुली कहूंगा, हल्के फुल्के में नहीं लें इसको, योग एक उचित शिक्षक के साथ में किया जाए. और पतंजलि योग सूत्र में भ्रांति दर्शन योग पथ की सबसे बड़ी बाधा कहा गया है. तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उन सभी के लिए मैसेज है, योग केवल हाथ पैर हिलाना नहीं, एक उचित शिक्षक के सानिध्य में आप पूर्ण तरीके से अगर इसको सीखते हैं तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं और आपके जीवन की दिनचर्या और आपके जीवन का उत्तम स्वास्थ्य दोनों लक्ष्य पूरे होते हैं. कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जो बहुत आसान है, करे जा सकते हैं. श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, इनहेल इज गिविंग एनर्जी एंड एक्सहेलिंग इज ऑल टॉक्सिन्स आर गेटिंग आउट. तो श्वास लेना जीवन है और श्वास छोड़ना मृत्यु है. तो चाहे क्रॉनिक डिसेबिलिटेड पेशेंट हो, यंग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हठ योग प्रति भी काम है. बिल्कुल स्पष्ट मेंशन है कि किसी भी एज ग्रुप में आप योग अपना सकते हैं, क्योंकि योग जीवन जीने की शैली है. इस जीवन शैली को ऐड कर लो जिसको हम कहते हैं योग, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया, इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो.
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहित आपका, कि योग को अपनाने और स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने के आपने सूत्र बताए. श्रोताओं, आपको बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, तकनीकी सहयोग सुप्रिया बैनर्जी, संपादन रितिका गुप्ता, संयोजन जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना.
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है. अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे. नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार.

0: मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सीटों पर जीत के आधार पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नामांकनों की कल जाँच की 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय नागरिक भागीदारी द्वारा निर्देशित होना चाहिए। युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री बिरला ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 7 से 8 सालों में बढ़कर लगभग $45 अरब तक पहुंच सकती है। ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में $9 अरब की है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में दृष्टिकोण को लेकर जो बदलाव आया है वह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव छोटे शहरों से आने वाले सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।
1: यावत् चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर्यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्।
2: चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो जहां प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो।
0: भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सीमांत जिलों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सरहदी जिले जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सर्वे कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई थी।
3: गृह मंत्री महोदय ने, सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें पांचों जिले जो हैं सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपी के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर

0: कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का एंक्रोचमेंट है, कि सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए, और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले ये हमें इसमें निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्लियर है कि एंक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई करनी है, और उससे पहले एक सर्वे का कहा गया है, तो सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को हमने यहाँ से पाबंद कर दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे है, सर्वे स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा, और जैसे स्टेट से निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। देश विदेश के 566 शहरों में एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। एनटीए की जानकारी के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ राजीव पचार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कमिश्नरेट क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक रहेगी। प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काऊ, भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी नजर बनाए हुए है। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थम जाने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से 11 जून तक तापमान में बढ़ोतरी होने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर सहित प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। अजमेर में भी कई जगह पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई।
2: कल दिन भर की गर्मी और उमस के बाद देर रात करीब 2 बजे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं और तेज मूसलाधार बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई जगह पेड़ और सोलर पैनलों की प्लेटें होर्डिंग्स उड़ गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि आज सूर्योदय के साथ ही उमस फिर बढ़ने लगी है। नीलिमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर में कल विशेष अभियान चलाकर करीब 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित उज्जैन, छोकरवाड़ा, वैर, बयाना और रूपवास में ये कार्रवाई की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना। पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं जगराम प्रजापत।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल अब यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे थे जगराम प्रजापत को। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज़ में। संगीत था दिलीप सेन समीर सेन का। गीत के बोल थे समीर के। फिल्म का नाम था इतिहास।

समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत था आदेश श्रीवास्तव का, आवाज कुमार सानू की थी और ये गीत हमने लिया था फिल्म शिकारी से।

डोली सजा के रखना, इस फिल्म में आप सुन रहे थे एमजी श्रीकुमार और अनुराधा पौडवाल को। संगीत था ए आर रहमान का, गीत के बोल थे महबूब की।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के फनकार।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हूं आप सबकी खिदमत में लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आज के फनकार। आज का दिन कुछ खास, कुछ विशेष। आज हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसने अपनी

खूबसूरती, डांस और फिटनेस के प्रति समर्पण से लाखों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी की। आज हम आपको सुनवाएंगे उन पर फिल्माए कुछ सदाबहार नगमे, क्योंकि आज है 8 जून और आज है शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत अनु मलिक का है, गीत के बोल रानी मलिक के हैं। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, शिल्पा शेट्टी को बचपन से ही डांस और खेलों का शौक था। उन्होंने भरतनाट्यम का प्रशिक्षण भी लिया और स्कूल के दिनों में वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रही। बाद में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई।

0: ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म गैम्बलर से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं इस अंतराल के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी आते हैं।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, साल 1993 में शिल्पा शेट्टी ने फिल्म बाजीगर से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और काजोल थे। फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म के लिए शिल्पा शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन भी मिला।

और फिल्म का नाम था बाजीगर। दोस्तों, बाजीगर के बाद शिल्पा ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सन 2000 में आई फिल्म धड़कन ने उन्हें नई पहचान दी। इस फिल्म में उनकी भावनात्मक अदाकारी को खूब सराहा गया। फिल्म के संवाद, गीत और कहानी आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म धड़कन से। संगीत था नदीम श्रवण का, गीत के बोल थे समीर के। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी को बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर्स में गिना जाता है। उनके कई गीत आज भी पार्टियों और मंचीय प्रस्तुतियों की शान है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और डांस स्टाइल ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है। कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं आगे और आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे संजीव दर्शन, आवाज़ें थी कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की, और फिल्म का नाम था कर्ज। साल 2007 में शिल्पा ने ब्रिटिश रियलिटी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में भाग लिया और विजेता बनी। इस उपलब्धि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई।

ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म गर्व प्राइड एंड ऑनर से। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी ने व्यवसायी राज कुंद्रा से विवाह किया। उनकी एक बहन है श्मिता शेट्टी, जो स्वयं भी अभिनेत्री हैं। परिवार के साथ साथ शिल्पा ने अपने पेशेवर जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। फिल्मों के अलावा शिल्पा शेट्टी फिटनेस और योग के लिए भी जानी जाती हैं।

लाइफ इन ए मेट्रो, इस फिल्म में आप सुन रहे थे सोहम को। गीत के बोल थे सईद कादरी, संदीप श्रीवास्तव और अमिताभ वर्मा के। संगीत था प्रीतम का। दोस्तों, योग को लोकप्रिय बनाने में शिल्पा शेट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज भी लाखों लोग उनके फिटनेस वीडियो और सुझावों का अनुसरण करते हैं। शिल्पा ने कई लोकप्रिय रियलिटी शो में जज की भूमिका भी निभाई। विशेष रूप से सुपर डांसर में उनकी मौजूदगी दर्शकों को बेहद पसंद आई।

इस गीत के साथ ही आज के फनकार कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आपको सुनवा रहे थे शिल्पा शेट्टी पर फिल्माए कुछ सदाबहार नगमे उनके जन्मदिन पर। इस कार्यक्रम में मैं था आपका दोस्त, आपका साथी गुलशन। अब दें इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम पेश किया गुलशन मेघानी ने।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 11 बज चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम गीत बहार।

गीत बहार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की, इस बेहतरीन आवाज़ और साज के सफ़र की बहुत शुभकामनाएं। पहला गाना गीत बहार कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये फिल्म है अमानत और इस गाने की फरमाइश हम तक पहुंची है, हमारे आप सभी साथियों के संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और हम शामिल करते हैं आपके संदेश।

पहला गाना सुनवा रहे हैं हम आप सभी साथियों को, नलेश्वर महाराष्ट्र से पी एस न्हावकर, निर्मला विशाल नारायण इंगले, सोपान तायडे। आप हैं सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाभली से, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, खोखरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा, चक 15 PS से सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन, रोबिन सिंह जोशन। ये संदेश मिला है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, और आप हैं नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा और आपके परिवार के लोग, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खौरवाल और आपके साथ कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। बागपत यूपी से लिखते हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, हीरा वाली फाजिलका से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम और रणजीत राम किरोड़ीवाल, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। और ये संदेश हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा की तरफ से। ये गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री अंजलि करवा, बाला साहब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टुवुल और पी बी कुलथे। आप हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, प्राग टेलर, तनुजा और ईशांत दिवांगन। और ये संदेश हमें मिला है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की तरफ से। आप सभी साथी सुने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना, ये फिल्म है अमानत, सुनते हैं। ये गाना हम आपको सुनवाते हैं चंद खूबसूरत अल्फाज के साथ आपके लिए। अल्फाज कुछ यूं है कि इश्क पर क्या गुज़रती है, इश्क पर क्या गुज़रती है हुस्न ये राज क्या जाने, इश्क पर क्या गुज़रती है हुस्न ये राज क्या जाने, इस दिल के तड़पने का कोई अंदाज़ क्या जाने, और दिल परवाने का और हमसे पूछो मज़ा जल जाने का, वो जालिम साज क्या समझे वो जालिम अल्फाज।

0: नजर न लगा दीजिए।
1: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
0: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

दोस्तों, गीत बहार कार्यक्रम के आगाज़ में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गाना। अगला गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं आप सभी साथियों को। हमारे पास आपके ख़त भी हैं, संदेशों के साथ साथ हम आपके ख़त भी शामिल करते रहेंगे। अगला गाना आपके लिए, मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका, रमन, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना और किनसुख खन्ना, और राजपुरा पंचायत से हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, जवाला सिंह, जगसीर सिंह और गुरसाहब सिंह चहल की तरफ से खत हमें मिला है। आप हैं खैरे का सिरसा से इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन और हनी लोट, मसीता डबवाली से दर्शन लोट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत और इनके परिवार के लोग। आप हैं श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा, और दौलतपुरा से ये खत हमें मिला है शिवलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत की तरफ से। और आपके संदेश भी हमारे पास हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और कांता चौधरी। आप हैं नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। आप लिखते हैं अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, कुलविंदर कौर मान और आपके बहुत से साथी। प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। आप लिखते हैं जोगीवाला श्रीगंगानगर से, अरायण से लिखते हैं बनवारी लाल जयपाल, बिमला, मोनू, ममता, दिशा, मोक्स, सुशांत और विक्रम जयपाल। ये गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं ज्योति नगर नोखा से पुखराज, बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी और हसन सिक्का। और आप हैं भादरा अनूप सैर से गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, अशोक कुमार, साहिल, राघव, मुरारी लाल, मदन लाल शर्मा, पंकज, मनीराम मील। और ये संदेश मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार की तरफ से। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। और यही गाना आपके लिए भी। आप हैं अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, बिमला प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति और विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कृष्ण मायल, हनुमान सारण, कीड़ू राम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। आप लिखते हैं कलाना भादरा हनुमानगढ़ से। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए। सुनिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे लोकेट फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। और अगला गाना आप सभी दोस्तों के लिए, विरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश कुमार और सनी भावसार, घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति शिवम ढूकिया, सचिन सचिन, अमना तमना, साइना विष्णु ढूकिया और ईवा धारणिया। ये संदेश मिला है बहरवाला से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना, हिमानी शिवम और इनके परिवार के लोग। आप हैं बांडीवाला फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया और योगेश बगड़िया, आपके साथ रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आप लिखते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और यह संदेश मिला है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा की तरफ से। यही गाना हम आप सबको भी सुनवाना चाहते हैं। आप हैं जाखोद से संभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा कुमारी खटक। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद कलीम अंसारी। शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की तरफ से संदेश मिला है। रिंगनी से आप लिखते हैं दिनेश वर्मा और करुण वर्मा। और आप हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। और यह संदेश मिला है कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से लिखने वाले हैं सैयद मशरूर, साइना हसन, अक्षा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब की तरफ से यह संदेश मिला है। यही गाना हम आपको सुनवाते हैं। आप हैं

खेड़ा, पित्रामल उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंत मूणत और चेतन नाहटा के साथ दीक्षा और कुश मूणत भी है। और आप दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और साथ में बब्बू के साथ डब्बू, और मजनू का टीला दिल्ली से लिखते हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। दतरंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की तरफ से संदेश हमें मिला है। और ये हमारे साथी हैं, काफ़ी नाम आपने भेजे हैं। निवेदन ये करना चाहेंगे कि आप कम नाम लिखें तो और भी साथियों के संदेश बहुत ज़्यादा हम शामिल कर पाएंगे। बहरहाल आप लिखते हैं राम द्वारा के पास डाबली रंगाला जालोर से, धनवंती आसू सांजटा, खुशबू देहडू, खुशवीर, तेजवर्धन सिंह, सिद्धार्थ, दिनेश, विनोद, अशोक कुमार, लीला, ज्योति, प्रतिभा, भरत, मास्टर पेमाराम, शेराराम, राम स्नेही, कोला राम और वीरेंद्र चौधरी का संदेश हमें मिला है। आप हैं पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, आप लिखते हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष की तरफ से संदेश हमें मिला है। ढाणी लाल खां से जावेद खान जोया, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान और आपके बहुत से साथी। आप सभी साथियों को हम सुनवाना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गाना। सुनिए ये गाना, खूबसूरत, मौसम के अनुसार आपके लिए।

दोस्तों, हम आपको सुनवा रहे थे ये बहुत ही खूबसूरत गाना। आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। ये फिल्म थी जवाब। और अगला गाना हम सुनवाना चाहते हैं, हमारे आप सभी साथी हैं जिन्होंने इस गाने के लिए संदेश भेजे हैं। आप हैं मंसूरी लिसनर्स क्लब मुंगीसापुर से, लिखते हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सविस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। आदर्श नगर मलोट से लिखते हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा के साथ निवान शर्मा। फाजिलका से आप लिखते हैं भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडली खेड़ा, शैलिनी खेड़ा, टिवंसी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और आपके बहुत से साथी। अली का डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सर्वजीत लखोत्रा, रानी सोनू और रजनी। मेरठ कैंट से लिखते हैं दिग्दर्शन और कविता गोड। संदेश हमें मिला है बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू की तरफ से। आप लिखते हैं मंडी के श्री सिंहपुर से, आप हैं बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी और आपके साथ विश्वजीत। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट से, बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, आपने दोबारा संदेश भेज दिया है। हम निवेदन करना चाहते हैं हमारे श्रोता साथियों से कि एक कार्यक्रम में आप एक ही संदेश भेजें और एक ही जगह से आप नाम लिखें और भी श्रोता साथी जो हैं उनको हम कार्यक्रम में शामिल कर पाएँ। उम्मीद है कि आप खूबसूरत गानों के साथ साथ हमारा ये निवेदन भी स्वीकार करेंगे। अगला संदेश मिला है पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह की तरफ से। आप हैं पीपर लोड सरगाम छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। आप लिखते हैं गोवर्धन कॉलोनी बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन और आपके बहुत से साथी। आप हैं गुजरात गांधीग्राम से परवीन सोनी और जगदीश जौहरी की तरफ से ये संदेश हमें मिला है। गोलूवाला हनुमानगढ़ से लिखते हैं सुनील और आप लिखते हैं अभिजीत गुहानकर, राही सरिता गुहानकर, प्रणीता, सिद्धांत गुहानकर, अर्जुन गुहानकर और टुक टुक। आपने जगह का नाम नहीं लिखा है, आप महाराष्ट्र से लिखते हैं। और 5MD पत्रोड़ा श्रीगंगानगर से मंगल जनागल, राही रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु सुनील जनागल और आपके बहुत से साथी। आप हैं फवारा चौक सिरसिला चुरू से, आप लिखते हैं संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा और आपके बहुत से साथी। मानसा बस स्टैंड से आप लिखते हैं जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग और आपके परिवार के लोग। आप लिखते हैं गंज नुरवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान और ये संदेश हमें मिला है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की तरफ से। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना। आवाज़ें हैं इस गाने में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, आइए सुनते हैं।

और अब्बा, खैर, आपके संदेश बहुत हैं और आपके ख़त भी हमें मिले हैं। और ये गर्मी का मौसम, गाने हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको खूबसूरत सुनवाएं। ख़त मिले हैं हमें कनेरा मोहल्ला पटियाला से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की तरफ से, मक्खू से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी, मुनीश बजाज और इनके बहुत से साथी, अलीका डब्बवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता और आपके साथ हैं कुलदीप गांधी, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक और शोभा नायक की तरफ से खत मिला है मंडी।

बोलवाला से ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान और आपके बहुत से साथी, छपड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और समीन बानो, और ये ख़त मिला है मंडी डबवाली से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय अनिल और मीनू बोकोलिया की तरफ से। और आपके संदेश भी हैं, साथ साथ हम शामिल करते हैं। संदीप मकड़, ज्योति मन्नत, भारत मकड़, कमल साहनी, आप लिखते हैं पींगा वाला चौक गोराया जालंधर से, बठिंडा रोड मंडी डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की तरफ से संदेश मिला है। यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। आप हैं गौरव अनिल, कविता मानसी अरोड़ा और आपकी फैमिली के लोग। आपने लिखा है गांधी मार्ग मोती नगर नई दिल्ली से। आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप देवनागरी हिंदी में संदेश भेजेंगे तो आपके नाम का उच्चारण हम सही तरीके से कर पाएंगे। आप लिखते हैं संदेश नागपुर से, कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, निपी साहनी और सुनीता साहनी, करनपुर गोविंदगढ़ माझीवाला से राजू टूटे जा खुश दिल, उर्मिला टूटे जा, गुड्डू जीनू, मन्नू शिवसेठी करनपुरी, पाल मिस्त्री करनपुरी, स्माइल टूटे जा और पवन गुज्जर, चक 14 पीएस से आप लिखते हैं कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विरक और आपके बहुत से साथी। यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। आप हैं अनूपगढ़ से, भगवती देवी, पूनम, रवि, कोमल और आपके परिवार के लोग, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और आपके बहुत से साथी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और साथ में लड्डू, और गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैज़ान खान, अनु खान, उस्मान खान और कलीम अंसारी। आप हमारे साथी हैं सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं आपके लिए इस मौसम का ये खूबसूरत गाना।

दोस्तों, आप सुन रहे थे मकसद फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में आपके लिए। आपके खत मिले हैं रायका कलां बठिंडा से, सतपाल सिंधु, सुखजीत कौर सिंधु, प्रदीप सिंधु, गुरदास सिंधु और आपके बहुत से साथी। मुक्सर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु और भूपेंद्र। दोस्तों, ये खत मिला है भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। मलोट कैंप से खत मिला है सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मवीर, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधू और गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी की तरफ से। रंग महल से सुखदेव नाथ, अमित मंगलाव और इंद्र मोहन। और आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत बहार, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और मैं नरेश वर्मा आपके लिए सुनवा रहा हूँ खूबसूरत गाने। खतों के साथ संदेश भी हम शामिल कर रहे हैं, आपके संदेश हमें काफ़ी मिले हैं। अगला संदेश हम पढ़ते हैं। आपने संदेश भेजा है कुड़ी सेक्टर सूर्यनगरी जोधपुर से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी, बेबी बाय, हिमाक्ष। व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही और राजश्री गौरव शाही की तरफ से संदेश मिला है। फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, आपका संदेश भी हमें मिला है। आपने जगह का नाम नहीं लिखा। झोरड़ फार्म हाउस बहलोल नगर से नरेंद्र झोरड़, भीमसेन झोरड़, लोकेश झोरड़, गौरव झोरड़, पुनीता झोरड़ और आरवी झोरड़ की तरफ से संदेश मिला है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल, दिशा मोला और इनके साथ जगतार जग्गा भी होते हैं। और ये है हिपरसोगा से उस्मान शेख, फौजी, सायरा बानू, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। मरहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन आबासी, शहनाज, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम और यशफ अबासी। पटेल नगर मलोड से रमेश कुमार जाजूरिया।

गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू आप हैं, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, पार्थ, कश्यप और प्रहलाद, आपने ये संदेश लिखा है बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। परमवीर हाउस बठिंडा से लिखते हैं अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर की तरफ से संदेश मिला है। और ये संदेश है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा आपने लिखा है, मॉडल टाउन करनाल से, और आप हैं बस स्टैंड बुरज हनुमानगढ़, फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा, हांडीखेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा आप लिख रहे हैं, संगरिया से गोवर्धन दास, कृष्णा देवी, योगेश, मनीष, माही, केदार, चित्रा, बद्रा और नन्नी युवांशी, हितेंद्र दास संदेश भेजते हैं आसाम से। अगला गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डेनी पंवार और मनीष पंवार, दिनेश चौहान हैं हमारे नेत्रहीन श्रोता हैं रामदेवरा से, डांगरी से बाबूलाल और खुदा बख्श खलीफा, खलीफों की बावड़ी से, संगरिया से लिखते हैं श्याम मिड्ढा, सुमन मिड्ढा और आपके परिवार के लोग, तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना आप हैं, लोहड़ी महोबा बुंदेलखंड यूपी से, जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौर और आपके साथ सुनील पाठक। आप सभी साथियों को हम सुनवाना चाहते हैं जानी दुश्मन फिल्म का ये दो गाना, ये आवाज़ें हैं किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की, सुनिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गाना जानी दुश्मन फिल्म से, और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं। आप हैं जालना महाराष्ट्र से विजय पाटिल और आपके परिवार के लोग। आपने संदेश हमें भेजा है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नीति कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से आप लिखते हैं। खारिया ढाणी सिरसा से, सतवीर सिंह बिजारणिया, देवेंद्र बिजारणिया, राजपाल अभिषेक, योगेश पूजा, आरजू और नव्या बिजारणिया की तरफ से ये संदेश हमें मिला है। गोविंदपुरा सीकर से आप लिखते हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और आपके साथ हैं आपके परिवार के लोग। और हमें खत भी मिले हैं, कुछ खत और शामिल करते हैं हम। कवाई सालपुरा 12 से आप लिखते हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव की तरफ से हमें यह खत मिला है। आप हैं अर्जुन सर से, अजय ओझा, संदीप निरंजन, संजय गजानंद, अशोक दोलू, पिंटू चिंटू और गंगा देवी। ये संदेश हमें मिला है, ये खत हमें मिला है। इस खत को लिखा है हमारे साथी लोकू कॉलोनी हरियाणा से, लिखते हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेश कुमार बरखा, योगेंद्र चिंडालिया और आपके परिवार के बहुत से साथी हैं। ये खत एक और मिला है 10SDP लालगढ़ जाटान से, रामेश्वर निराणिया, सुमन, दिव्या नूतन, पंकज मेहरचंद, हेमू और आपका पूरा परिवार। कार्यक्रम के आखिर में हम आप सभी साथियों को सुनवाना चाहते हैं अवतार फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना। इस गाने में आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं।

और दोस्तों आप सुनते रहिए अवतार फिल्म का ये खूबसूरत दो गाना, और अपने दोस्त नरेश वर्मा को दें इजाज़त। फिर से मुलाकात इसी कार्यक्रम में आपके संदेशों और खतों के साथ होगी। नमस्कार।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनिएगा 12:05 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए। इसमें हम आपको सुनवाएंगे मशहूर हास्य अदाकार राजेंद्र नाथ की फिल्मों के कुछ खूबसूरत गाने उनकी जयंती पर। 12:30 पर आप सुनिएगा चंद खूबसूरत गज़लें, चुनिंदा गज़लें आपके लिए। 12:50 पर खेत खलिहान में जानकारी का विषय होगा माटी में जैविक कार्बन का महत्व। और आप सुनिएगा 1 बजे हिंदी में समाचार, आकाशवाणी जयपुर से समाचार हम रिले करेंगे। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत, जानकारी के विषय रहेंगे साइबर ग्रेमिंग, ऑनलाइन और कामकाजी महिलाओं के लिए समर लाइफस्टाइल और अयोध्या की सैर करें, समर डाइट। और इसके साथ आप सुनेंगे चंद खूबसूरत गाने भी। 2 बजे मिड डे न्यूज़ आप सुनते हैं और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, और 2:30 पर

आप सुनिएगा फिल्म संगीत में मशहूर अदाकारा डिंपल कपाड़िया की फिल्मों के खूबसूरत गाने आपके लिए, और 3 बजे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस का रिले होगा।

शाम 5 बजे सुनिएगा आप कार्यक्रम युवकवाणी। जानकारी के विषय रहेंगे विश्व महासागर दिवस, जीवन में विचारों का महत्व, मोबाइल में उलझी युवा पीढ़ी, आज के इतिहास के साथ आप सुनेंगे चंद खूबसूरत गाने। 6 बजे आप सुना करते हैं कार्यक्रम विवरण। 6:05 पर आप सुनेंगे सराइकी। 6:30 पर हिंदी में समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हम रिले करेंगे। और शाम 7 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। चौपाल में जानकारी के विषय रहेंगे माटी जांच का मान कैसे लें, बकरी पालन, वृक्षारोपण और साथ में चंद लोक गीत लोक भजन आप सुनेंगे। कार्यक्रम पेश करेंगे सुनील शर्मा। 7:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए। 8 बजे के फिल्म संगीत में आप सुनेंगे एक ही फिल्म के गाने। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ 8:09 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

रात 9:15 पर आप सुनिएगा गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत, 9:23 पर पब्लिक स्पीक आकाशवाणी दिल्ली से, 10 बजे खेल जगत आकाशवाणी जयपुर से, और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 11 बजे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर न्यूज़ इन इंग्लिश आकाशवाणी दिल्ली से।

हमारे सभी फौजी भाइयों और सभी दोस्तों को नमस्कार नरेश वर्मा की तरफ से। सैनिकों के लिए इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं मशहूर हास्य अदाकार राजेंद्र नाथ की फिल्मों के उन पर फिल्माए गए बहुत ही प्यारे गाने आपके लिए, सुनिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गाना हमने आपको सुनवाया, और ये फिल्म थी रूठा ना करो। हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अदाकार जिन्होंने फिल्मों में अपनी हास्य भूमिकाओं से लोगों को बहुत ही गुदगुदाया, पुराने दौर के फनकार। हर एक बड़े फनकार के साथ इन्होंने फिल्मों में काम किया। राजेंद्र नाथ, आज ही के दिन 8 जून 1931 को इनका जन्म हुआ, और अब ये जिस्मानी तौर पर हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, मगर अपने फन और अपनी अदाकारी के ज़रिए आज भी हजारों, लाखों, करोड़ों दिलों में ज़िंदा हैं। और ख़ास बात है कि ये भी रही कि इनकी फिल्मों में इन पर बहुत ही प्यारे गाने फिल्माए गए हैं, खासकर मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर के गाने। तो हम आपको इन्हीं पर फिल्माए गए गाने, राजेंद्र नाथ पर फिल्माए गए गाने सुनवा रहे हैं इनकी जयंती पर। यह है आपके लिए अगला गाना, सुनिए।

आप सुन रहे थे ये गाना और ये फिल्म थी जौहर इन बॉम्बे। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। मशहूर हास्य अदाकार राजेंद्र नाथ के गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। अगला गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, आइए सुने।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में तीन बहुरानियां फिल्म का ये प्यारा सा गाना। मशहूर अदाकार राजेंद्र नाथ की जयंती पर उन्हीं पर फिल्माए गए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं और ये है आपके लिए अगली पेशकश।
1: ओ डार्लिंग, आई लव यू।
2: ओ नो, आई हेट यू।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना की आवाज़ में ये दो गाना, ये फिल्म एक पहेली। हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र नाथ, मशहूर हास्य अदाकार, इनकी जयंती है आज 8 जून 1931 को इनका जन्म हुआ। इनकी याद में इन्हीं पर फिल्माए गए प्यारे गाने। 13 फरवरी 2008 को राजेंद्र नाथ इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन पीछे छोड़ गए बहुत ही खूबसूरत फिल्में और अपने हंसाने वाले किरदार। इस बड़े फनकार को याद करते हुए यह है कार्यक्रम का आखिरी गाना, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में ये फिल्म है मेला। आप सुनें ये गाना और नरेश वर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:30 हुए हैं। अब सुने सुगम संगीत।

दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर शफ़ी हसन का कलाम, मरीज़ इश्क का क्या है जिया जिया न जिया। आवाज़ हरिहरन की थी। और अब हम आपको सुनवाते हैं ये कलाम। तड़प उठूं तो भी जालिम तेरी दुहाई न दूं। ये आवाज़ है हरिहरन की, आइए सुने।

तड़प उठूं तो। ये कलाम आप सुन रहे थे, अहमद फराज का ये कलाम हरिहरन की आवाज़ में आपने सुना। और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए इसरार अंसारी का ये कलाम, लफ्ज़ों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज के फनकार थे गायक हरिहरन। ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब सुने खेत खलिहान। जानकारी का विषय है माटी में जैविक कार्बन का महत्व। जानकारी दे रहे हैं सुनील शर्मा। आइए सुनते हैं।
1: खेत खलियान सुननी है सगले किसान भाइया ने, सगले खेतीयर भाइया ने, सुनील भाई की ओर से मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, बात करें आज खेत खलियान में माटी के अंदर जैविक कार्बन को के महत्व है, के इशु लाभ है कि यहाँ पाए न पूरा कृषका। तो किसान भाइयों, सीधी भाषा में आप बात करा तो जैविक जो कार्बन है वो माटी की एक तरह की है आत्मा है, या इना पाएंगी प्रतिरोधक क्षमता भी के इसका। जितनी ज़्यादा मात्रा में होवेगो अपनी माटी की है बितनी ज़्यादा जीवित होगी, एर उपजाऊ होगी और लंबे टाइम तक अपने उत्पादन देवेगी। किसान भाइयों, जद पेड़ पौधा है जिया जीव जंतु है ये सड़े गले तो बांसों की है हुमस बने, यानी हुमरस बने जो माटी के अंदर जो जैविक कार्बन है इन्हें स्थायी रूप से जमा कर दिए। माटी में अपा इंगो एक तो किया लाभ की बात करा तो पहलो लाभ तो वही है कि इशु अपनी जकी माटी की उपजाऊ क्षमता है वह बढ़े, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों का भंडार हो, इनमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सूक्ष्म पोषक तत्व एक किया सारा हुआ और ये अपनी माटी की बांध के रखे है। ऐसा के पौधा की जरूरत भी हुए तो जिया जिया पौधे ने जरूरत पड़े बिया बिया धीरे धीरे ये तत्व प्रदान होता रहे। ऐसा के कि अपनी जकी पोषक तत्व ने सोखण की क्षमता है माटी के अंदर भी में भी

0: की है, माटी की है, जबकि उपजाऊ ऊपरली माटी है बा दूर चली जावे। तो जठर जेवी कार्बन माटी में ज़्यादा हो सी बे की है, कणा ने आपस में बांध के राख सी, जिया फेविकोल बांध के रख है तो बीतरियम। तो सा ईशु के उसी आपने जकी तेज बारिश होने लाग रही है या हवा चलन लाग रही है तो मिट्टी कम उड़ेगी और बिंगी सुरक्षा होगी। सागे सागे की फसलों की जकी गुणवत्ता है और जो को स्वाद है, जो को मान लो दाने को बदलने लाग रही है, सब्जी है कोई और है, स्वाद जो को बदलने लाग रही है, इनमें भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो का जैविक कार्बन है, एक ये उपजी फसलां जी अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, हमें पोषक तत्व विटामिन और खनिज मात्रा की खनिजों की ज़्यादा मात्रा हो तो इसी फसलों को स्वाद बढ़िया होगा। सागे फसल चमकदार होगी, काटन के बाद लंबे टाइम तक यह खराब भी कौन हुए, तो वो भी अपने एक बहुत ही बड़ो फायदो हुए। तो इंगो जो आप भी बात करा अपने खेत में किया बढ़ा सका, तो जो जैविक तरीका है आंगो इस्तेमाल करके आप अपने खेत के अंदर जैविक कार्बन की जकी मात्रा है वह बढ़ा सका। जिया जैविक खादा की बात करा, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, आंगो इस्तेमाल अपन ज़्यादा करा तो बहुत ही बढ़िया है। हरी खाद में जिया डेंचो है, सिनी है, आंगो आप इस्तेमाल कर सका। वर्मी कंपोस्ट को आप प्रयोग करके भी अपने जकी माटी है में जैविक कार्बन बढ़ा सका। तो इन तरियाँ जो किसान भाई आपके खेत में ध्यान रखे, टेमो टेम माटी की जांच कराता रहे वै, तो की है वो फायदा उठा सके। तो अब अपने कार्यक्रम को समय पूर्व लाग रही हो, थारे सुनील भाई दी आ गया, राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेत खलिहान में माटी में जैविक कार्बन का महत्व विषय पर जानकारी, जानकारी दे रहे थे सुनील शर्मा। ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, 1 बजने वाला है, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों ने अपने नाम पत्र दाखिल कर दिए हैं। भाजपा के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने आज अपने नामांकन प्रस्तुत किए। नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उधर कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नकली बीज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी बीज निगम के निदेशक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। एसीबी ने बताया कि आरोपियों ने एक बीज कंपनी के जब्त बीजों को गुजरात भेजे जाने की एवज में कंपनी से 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूचना मिलने पर एसीबी की टीम ने आरोपी को बीकानेर के लूण करणसर से बस से उतार गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 85,00,000 रुपए की अवैध धनराशि बरामद की गई। एसीबी ने बीज निगम के निदेशक के घर छापा मारा, जहां से 1,50,000,000 रुपए की राशि भी जब्त की गई। प्रदेश भर में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए चलाए जा रहे अभियानों के तहत 5 मई से 6 जून तक 19,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज, कम दबाव के साथ पानी और अनिश्चित जलापूर्ति की शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा करीब 7,500 सुधारात्मक कार्यों के जरिए पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। इस दौरान 6 जून को एक दिन में 3,000 से अधिक कार्य संपन्न करवा के लोगों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी जयपुर में चलाए जा रहे

0: अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज शहर के जगतपुरा और मालवीय नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जेडीए दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और आरएसी का जाप्ता शामिल रहा। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। प्रदेश में हाल ही में आए आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तंत्र को सुचारू करने के लिए सभी विद्युत वितरण निगम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवर लाल डेलू ने बताया कि सरहदी और पश्चिमी जिलों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़, चांदन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद लक्ष्य में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों को राहत मिली है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिलों में किसान सरकार के इस फैसले से उत्साहित है और मंडियों में गेहूं बेचान के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौकरिया ने बताया कि जिले का कुल गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़कर 8.75 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम पेश कर रही हैं अलका वर्मा। आइए सुनते हैं।

नमस्कार सखियों, आज का कार्यक्रम महिला जगत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी अलका वर्मा। कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की उस पावन नगरी पर जहाँ आस्था की धड़कनें सुनाई देती हैं, जहाँ हर कदम पर इतिहास और अध्यात्म का संगम दिखाई देता है। जी हाँ, आज बात करते हैं या सैर करते हैं एक मनमोहक जगह की, यानी कि अयोध्या नगरी की। उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। और ये जो नगरी है केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ मंदिरों की घंटियाँ, भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा मन को आध्यात्मिक आनंद से भर देती है। बात करती हैं भव्य राम मंदिर की, तो इस मंदिर की वास्तुकला, सुंदर नक्काशी और दिव्य वातावरण जो है हर आने वाले व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ दर्शन करते समय ऐसा लगता है मानो पूरा जो वातावरण है वो राममय हो गया है। राम मंदिर की बात हो ही रही है तो पहले एक भगवान राम पर ही ये गीत सुन लिया जाए, उसके बाद जो है हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको सुनवा देते हैं फिल्म गोपी का ये गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इस गीत

सखियों, हम आज के कार्यक्रम में सैर कर रहे हैं अयोध्या नगरी की। तो राम मंदिर दर्शन के बाद चलिए अब चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। तो ऊंचाई पर स्थित ये जो मंदिर है वो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा कनक भवन भी जो है यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। इसे सीता माता और भगवान राम का जो महल है वो माना जाता है। यहाँ स्थापित जो सुंदर प्रतिमाएं और शांत वातावरण जो है वो भक्तों के मन को विशेष आनंद जो है वो प्राप्त करता है। अयोध्या की यात्रा सरयू नदी के बिना जो है वो अधूरी ही मानी जाती है। शाम को राम की पैड़ी पर होने वाली सरयू आरती का दृश्य अत्यंत मनोहारी हो जाता है। हजारों दीपों की रोशनी जब नदी की लहरों पर झिलमिलाती है तब ऐसा लगता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। अयोध्या जो है वो केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी जो है वो अत्यंत समृद्ध है। यहाँ के बाजारों में धार्मिक पुस्तकें, हस्तशिल्प, पूजा सामग्री और स्थानीय व्यंजन जो है वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विशेष अवसरों पर आयोजित होने वाला दीपोत्सव अयोध्या की पहचान बन चुका है। लाखों दीपों से जगमगाती ये नगरी विश्व भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित जो है वो करती हैं। यदि आप शांति, आध्यात्म, संस्कृति और इतिहास का अद्वितीय संगम देखना चाहते हैं तो एक बार अयोध्या नगरी की सैर जरूर करें। राम की नगरी का संदेश यही है, प्रेम और सद्भाव रहे सभी में। राम की नगरी का संदेश यही है, प्रेम और सद्भाव रहे सभी में। मिलते हैं फिर किसी नई राह पर, नई नगरी की सैर पर। तब तक के लिए सुनते रहिए आप हमारा कार्यक्रम महिला जगत। और सखियों, ये जो समय हो चला है एक और गीत सुनने का, तो आपको सुनवाते हैं नीलकमल फिल्म से ये गीत। आवाज़ आशय भोंसले की, संगीत रवि का है और इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जो विश्वास जीत लेता है, कभी कभी वही इंसान जो है वो धोखे का जाल बुन लेता है। जी हाँ सखियों, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और चैटिंग प्लेटफॉर्म हमारी ज़िंदगी का जो है वो एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन इन सुविधाओं के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं। ऐसा ही एक खतरा है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है इंटरनेट के माध्यम से किसी बच्चे, किशोर या किसी अन्य व्यक्ति से दोस्ती जो है वो करता है और उसका विश्वास जीतता है, फिर उसका गलत फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करता है। कई बार अपराधी अपनी असली पहचान जो है वो छिपा कर नकली प्रोफाइल बनाते हैं और खुद को हम उम्र, मित्रव्रत या भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में जो है वो प्रस्तुत करते हैं। शुरुआत में तो ये जो लोग होते हैं ना, ये सामान्य बातचीत करते हैं, आपकी जो है वो पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते हैं, निजी जो जानकारियां हैं वो भी प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे जो है वो भावात्मक रूप से करीब आने लग जाते हैं। और इसके बाद जो है वो लोग आपसे फ़ोटो मांगेंगे, कोई वीडियो मांगता है, बहुत से लोग जो हैं वो बैंकों की जानकारी भी मांगते हैं या अन्य कोई निजी जो जानकारी है, यानी कि घर का एड्रेस हो गया या स्कूल का एड्रेस, कॉलेज का एड्रेस, ये भी मांगने लग जाते हैं। और कई मामलों में तो अपराधी लोगों को ब्लैकमेल करने, धोखाधड़ी करने या मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश भी जो है वो करते हैं। खासकर बच्चों और किशोरों को ऐसे मामलों में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता जो है वो होती है। साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, इस पर सखियों हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा है आनंद पक्षी ने और फिल्म का नाम है आप आए बाहर आए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्योंकि इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और आज के कार्यक्रम में मैं आपकी सखी अलका वर्मा आपका साथ देने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आ रहा भी है, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज बात चल रही है साइबर क्राइमिंग के बारे में, तो अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। तो सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जो जानकारी है, जैसे कि घर का या अपने स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का, कहीं का भी जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है या बैंकिंग की जो जानकारी है, वो किसी भी हाल में किसी के साथ भी साझा ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड जो रिक्वेस्ट है, वो भी स्वीकार करने से पहले उसकी पहचान की अच्छे से जाँच करें। अगर कोई ऑनलाइन फ्रेंड बार बार निजी जानकारी या तस्वीरें आपसे मांग रहा है, तो आप जो है सतर्क हो जाएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को ज़रूर दें। अगर किसी को साइबर अपराध का सामना करना पड़े, तो घबराने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। संबंधित प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें, सबूत सुरक्षित रखें, और साइबर अपराध हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क जो है वो आप ज़रूर करें। इंटरनेट जो है ज्ञान और अवसरों का विशाल संसार है, लेकिन इसका सुरक्षित उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सतर्कता हमें बड़े नुकसान से जो है वो बचा सकती है। कहते भी हैं कि ऑनलाइन दुनिया में रखे ध्यान, तकनीक का उपयोग समझदारी से करें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, और सुनते रहें हमारा कार्यक्रम। और इसी के साथ कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा है आनंद पक्षी ने, और फिल्म का नाम है अनजाना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गर्मी का मौसम और अपने साथ लाता है तेज धूप, थकान और पसीने की परेशानी। जैसे क्यों जो महिलाएं घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी निभाने वाली हैं इस मौसम में, उन्हें तो अपना विशेष जो है ध्यान रखना चाहिए। हालांकि सभी महिलाओं को रखना चाहिए, लेकिन जो दोहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं उनकी तो और भी ज़्यादा हो जाता है कि वो इस मौसम में अपना ध्यान रखें। इसीलिए खुद को हाइड्रेट रखें, दिन भर में खूब सारा पानी पिएं, घर से निकलते समय पानी की बॉटल ले जाना ना भूलें, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी जैसी जो लिक्विड्स हैं उनको, जो शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें। हल्का और पौष्टिक खाना लें। गर्मियों में तली भुनी और अधिक मसालेदार चीज़ों की बजाय मौसमी फल हुआ सलाद, दही, हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज का सेवन करें। इससे शरीर को आवश्यक पोषण मिलेगा और थकान भी जो है वो कम होगी। आरामदायक कपड़े पहनें। सूती और हल्के रंग के कपड़े जो हैं वो इस मौसम में आप प्रेफर करें। इससे शरीर को हवा मिलती है और गर्मी भी जो है कम लगती हैं। और अपनी स्किन का भी जो है इस मौसम में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तेज़ धूप में निकलते समय छाता, स्कार्फ या टोपी का उपयोग करें। चेहरे को साफ रखें, खूब सारा पानी पिएं और समय समय पर क्लीन अप जो है वो करते रहें। अक्सर काम के दबाव में हम अपनी नींद और आराम दोनों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं, तो रोज़ाना जो है अपनी पर्याप्त नींद लें और शरीर और मन दोनों से तरोताज़ा रहें। सिक्यू बातें आपसे इस विषय पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। संगीत दिया है एसडी परमन ने, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और फिल्म का नाम है तलाश।

दिन की शुरुआत एक्सरसाइज, योग या सुबह की सैर से करें। इससे शरीर जो है वो सक्रिय रहता है और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। कामकाजी महिलाओं को समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। लगातार काम करने से मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ सकती है। कुछ मिनटों का ब्रेक और गहरी सांसें आपको तरोताज़ा कर सकती हैं। कहते हैं ना कि मुस्कान को अपनी पहचान बनाइए, तनाव को खुद से दूर भगाइए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हर दिन को बेहतर बनाइए। गर्मी में अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं, आरामदायक कपड़े पहने, अच्छी नींद लें और नियमित एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और साथ ही साथ अपनी दिनचर्या में हिस्सा दीजिए संगीत को। तन और मन को प्रसन्न रखने में संगीत जो है सबसे आसान तरीका है। और तो चलिए आपके मूड को और रिलैक्स करते हैं। आप भी लीजिए एक ब्रेक और सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है जीने की राह।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्यों आराम भी उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत और जिम्मेदारी। स्वस्थ शरीर और शांत मन से आती है जीवन में खुशहाली। इसीलिए

सेहत की दौलत सबसे न्यारी, इसकी रक्षा जिम्मेदारी हमारी। सही भोजन और पेय अपनाएं, गर्मी में भी मुस्कुराते जाएं। छाछ, सत्तू और नींबू पानी, गर्मी में इनकी है बड़ी कहानी। शरीर को दे ये नई ताजगी और दूर करे सारी थकान पुरानी। ये हैं सखियों, गर्मी का मौसम है, बाहर बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, बच्चों और बुज़ुर्गों का विशेष रूप से उन्हें हाइड्रेट रहने की सलाह दें और अपने भोजन में ताज़े फल, हरी सब्जियां और हेल्दी ड्रिंक्स को शामिल करें। स्वस्थ खान पान ही अच्छी सेहत की कुंजी है और अपना ध्यान रखिए। और इसी के साथ वक्त है आप कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर बढ़ने का, तो आपको सुनवाते हैं इंतकाम फिल्म का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

ठंडी छांव सा हो आपका हर दिन, स्वस्थ रहे तन और प्रसन्न रहे मन। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपनी सखी अलका वर्मा को दीजिए इजाज़त।

0: Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
2: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
3: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर

0: लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े।

0: और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत

0: द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2:30 हुए हैं। कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार, नरेश वर्मा की तरफ से। दोस्तों, आज फिल्मी दुनिया की मशहूर अदाकारा डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन है। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्मों के खूबसूरत गाने, उन पर फिल्म आए हुए। पहला गाना आप सुने चंद अशार के साथ कि हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उसका चेहरा नज़र आए तो गज़ल कहते हैं, पड़ गई पाँव में तकदीर की जंजीर तो क्या, पड़ गई पाँव में तकदीर की जंजीर तो क्या, हम तो उसे भी तेरी जुल्फ का बल कहते हैं।

दोस्तों, आप सुन रहे थे सागर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। जावेद अख्तर ने गाना लिखा, संगीत आरडी बर्मन का था। सागर जैसी आंखों वाली मशहूर अदाकारा डिंपल कपाड़िया का आज जन्मदिन, और हम आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं पर फिल्माए गए उन्हीं की फिल्मों के चंद बेहतरीन गाने। मशहूर अदाकारा डिंपल कपाड़िया का जन्म हुआ 8 जून 1957 को मुंबई में, और 1972 में वे फिल्मों में आई और बहुत ही खूबसूरत फिल्में उनकी। बॉबी फिल्म से उन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि पाई और उसके बाद कई बेहतरीन फिल्में दी। एक फिल्म जांबाज, जिसका दो गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं, आइए सुनें।

ये गाना आप सुने किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में। फिल्म जांबाज गाना इंदिवर ने लिखा है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। सुनिए।

दोस्तों, आपने अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की फिल्म जांबाज का ये गाना सुना किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज़ में।

और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं आखिरी अदालत फिल्म का ये गाना, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, अनजान का गाना, संगीत अनु मलिक का। और इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया की यादगार भूमिका। सुनिए ये खूबसूरत गाना।

आपको उन्हीं की फ़िल्मों के गाने सुनवा रहे हैं। कुछ फ़िल्मों का ज़िक्र हम करते हैं जो मशहूर रहीं उनकी, बॉबी से लेकर उसके बाद मंजिल मंजिल, एतबार फिल्म जिसमें उन्होंने राज बब्बर के साथ काम किया और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में थे सुरेश ओबेराय, सागर फिल्म ऋषि कपूर के साथ, जामबाज अनिल कपूर के साथ, काश फिल्म, काश फिल्म का एक गाना भी हम आपको सुनवाएंगे, साजिश, गुनाहों का फैसला, 20 साल बाद, कब्जा, गंगा तेरे देश में, बंटवारा और भी बहुत सी मशहूर फिल्में इनकी, आग का गोला, लेकिन, रुदाली, लेकिन और रुदाली ये कलात्मक फिल्में इनकी। बहरहाल गाना हम आपको सुनवा देते हैं राम लखन फिल्म का, सुनिए आप मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

दोस्तों, आपने आखिरी अदालत फिल्म का ये गाना सुना, मोहम्मद अज़ीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, और ये है अगली पेशकश।

आपको सुनवाते हैं डिंपल कपाड़िया और जैकी श्रॉफ की मशहूर फिल्म राम लखन का ये दो गाना। और इस दो गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। डिंपल कपाड़िया के जन्मदिन पर हम

राम लखन फिल्म का ये दुगाना मनहर और अनुराधा की आवाज़ में हमने आपको सुनवाया। मशहूर अदाकारा डिंपल कपाड़िया के जन्मदिन पर आप सुन रहे हैं उन्हीं की फिल्मों के उन पर फिल्माए गए खूबसूरत गाने, और आखिरी गाना हम आपको अब सुनवाते हैं। ये फिल्म है काश। इस गाने को संगीत दिया है राजेश रोशन ने, गाना फारूक कैसर का है, और ये गाना आप सुने किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ में, जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया की फिल्म का ये आखिरी गाना आपके लिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आपको सुनवा रहे थे मशहूर अदाकारा डिंपल कपाड़िया के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के खूबसूरत गाने। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कार्टन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 3 बजे हैं, कुछ ही पलों के इंतज़ार के बाद आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम होंगे। इंतज़ार करें।

वॉइस है, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है। नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 पर कहकशां प्रोग्राम नशर किया जाएगा। आज आप सुनेंगे मुझसे शादी करोगी फिल्म की कहानी और नगमे। 4:00 से आप फिल्मी नगमों का लुत्फ ले सकेंगे। ये प्रोग्राम शाम के 4:50 तक सुना जा सकेगा। शाम के 4:50 पर खबरें नष्ट होंगी और 5:00 आज की दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र इस मजलिस में नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब से चंद ही लम्हों के बाद खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप शबाना बेगम से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंत्योदय से तरगीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद को पिछले 12 साल में सरकार की पॉलिसियों में बुनियादी मकाम हासिल रहा है। फिलिपीन के जनूबी खित्ते मिंदनाओ में आज सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के ताकतवर जलजले के सबब 16 अफराद हलाक हो गए। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया बहरान फिर से बढ़ गया है। और आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए बहबूद के सरकार के 12 साल के सफर को उजागर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां आई हैं और इन तब्दीलियों में गरीब कल्याण और महरूम तबकों को बुनियादी मकाम हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने हमेशा अंत्योदय से तरगीब हासिल की है और हमेशा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि तरक्की के फायदे उन लोगों तक भी पहुंचे जो कई दहाइयों से पीछे रह गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोगों की अज़मत वक़ार और मौकों को यकीनी बनाने के मकसद से ही जनधन अकाउंट्स, फायदों की बराह रास्त मुंतकली, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम किए गए। जनाब मोदी ने कहा कि गरीबों के बेहतर मयार जिंदगी को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम रोल अदा किया है। मगरबी बंगाल सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली है, जो रियासत में हिफ्जान सेहत के दायरे को वसत देने की समत एक नुमाया कदम है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल सरकार आज नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने वाले हैं। साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को रियासत में नाफिज नहीं किया गया था। भारत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इस माह की 9 से 13 तारीख तक ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स ज़राई वुज़रा की अहम मीटिंगों की मेजबानी करेगा। आज भोपाल में एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मीटिंगें इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनाकिद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स एक ताकतवर आलमी प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स मेंबर ममालिक के पास दुनिया की कुल ज़राई आराजी का 42% हिस्सा है, नीज आलमी गजाई अशिया का 45% हिस्सा यही ममालिक पैदा करते हैं। जनाब चौहान ने एतमाद का इजहार किया कि मीटिंग ब्रिक्स तआवुन को नई समत अता करेगी। फिलीपीन के जनूबी खित्ते मिंदनाओ में आज सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के ताकतवर जलजले के सबब 16 अफराद हलाक और 200 जख्मी हो गए। जनरल सैंटोस शहर में कुछ इमारतें मुनहदिम हो गईं और अहम बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कम से कम एक साहिली गांव में सुनामी से हुए नुकसान की भी इत्तला मिली है। इंडोनेशिया और पलाओ और यहां तक कि जनूबी जापान में भी सुनामी के सबब छोटी लहरें देखी गईं। जलजले का मरकज मिंदनाओ जजीरे के जुनूब मगरिब से 33 किलोमीटर के फासले पर था, नीज इसकी गहराई 32 किलोमीटर थी। ये जलजले के झटके इंडोनेशिया के शिमाली सुलेवासी और शिमाली मलुकू सूबों में भी महसूस किए गए। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर फिर से मिसाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में बहरान बढ़ गया है और जंगबंदी भी खतरे में पड़ गई है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने इसराइल के अहम फौजी ठिकानों पर कई हमले किए। इनमें इसराइल के सबसे अहम दो फजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन नस्र का नाम दिया गया था। मीडिया इत्तला के मुताबिक 3 अलग अलग मकामात पर इसराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के रडार मराकिस को निशाना बनाए जाने के जवाब में ईरान ने यह कार्रवाई की है। उधर इसराइली फौज ने जो मगरबी ईरान में एक बड़े सनाती

ठिकाने पर फजाई हमले करने की बात की तस्दीक की है। इसराइल की दिफाई अफवाज ने ईरान के कलीदी अहमियत के हामिल साहिली इलाके में वाक़ महाशहर में वाक़ एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में कई ठिकानों पर हाल ही में हमले किए थे। इस तरह जंग खत्म होने की कोशिशों के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई है। ये लड़ाई इस साल 28 फरवरी को शुरू हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो ईरान के मिजाइल हमलों पर जवाबी कार्रवाई ना करें। उन्होंने ये तंबीह भी की है कि ऐसा करने से क़याम अमन समझौते के लिए की जाने वाली कोशिशों को जख्म पहुंचेगी। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के मिजाइल हमलों से मुज़ाकरात में खलल पैदा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो बातचीत का रास्ता अपनाए। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमरीका समझौता करने के करीब पहुंच गया है। उन्होंने ये वार्निंग दी कि किसी तरह के मजीद टकराव से इन कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। ये आकाशवाणी है। चीन के सदर शी जिनपिंग दो रोजा सरकारी दौरे पर शिमाली कोरिया पहुंचे। ये जनाब शी जिनपिंग का तकरीबन 7 बरसों में प्योंगयांग का पहला दौरा है। चीनी सदर के इस दौरे का मकसद अपने देरीन साथी शिमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है, जो हालिया बरसों में रूस के साथ ज्यादा करीब हो गया है। तवक्को है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के दौरान इक्तिसादी तआवुन, कोरियाई जज़ीरेनुमा से वाबस्ता सिक्योरिटी मामलात और शिमाली कोरिया चीन और रूस के दरमियान बाहमी तआवुन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। 1936 में आज के ही दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा था, जिसकी आवाज नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमत को तेजी के साथ वसत दी गई और 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 स्टेशंस काम कर रहे हैं, जो भारत के 98% आबादी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी 23 जबानों और 146 इलाकाई बोलियों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का गैर मुल्की नशरियात का शोबा 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियात खिदमत फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अजीम ख्यालात पर अमल करते हुए आकाशवाणी का खबरों का शोभा NST मुल्क के हर शहरी को, ख्वाह वो किसी भी खित्ते में रहता हो, 24 घंटे सातों दिन तमाम अहम जबानों और बोलियों में खबरें और नजरियात से हमकिनार कर रहा है। मगरबी बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के सरकर्दा लीडर जहांगीर खान को आज सुबह सवेरे नेपाल सरहद के नजदीक गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ है कि वो सरहद पार फरार होने की कोशिश कर रहे थे। एसटीएफ के अहलकारों ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। जहांगीर खान को मजीद पूछताछ के लिए कोलकाता लाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी से कबल गुज़िश्ता चंद हफ्तों से यह कयास आरई की जा रही थी कि वो कहाँ हैं। इससे कबल कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच ने 5 FIR के मामलों में उनके लिए उबूरी तहफ्फुज की मुद्दत में तौसी करने से इनकार कर दिया था। रियासत में सरकार बदलने के बाद कई गांव वालों ने जहांगीर खान के खिलाफ जमीन हड़पने और जबरन रुपया वसूल करने के इल्जाम लगाए थे। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। जनाब रॉय ने न सिर्फ ऐवान बाला से बल्कि तृणमूल कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत से भी सुबुकदोश हो गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी मुनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिजोरम म्यांमार सरहद, त्रिपुरा बांग्लादेश सरहद और मगरबी बंगाल में 4 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई कर रही है। इस केस का ताल्लुक मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक बोर्ड के अगरतला जोनल यूनिट की जानिब से मुनशियात जब्त किए जाने से है। इस मामले में 49 किलोग्राम से ज्यादा मेथाफिटामाइन और 40 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। तहकीकात से यह इंकशाफ हुआ है कि एक मुनजिम सरहद पारग्रो म्यांमार से यह नशावर मादा हासिल कर रहा था। इस जुर्म के इर्तकाब से हासिल होने वाली 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की अब तक निशानदही की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कहा है कि इस महीने की 2 से 2 तारीख से 7 तारीख तक 12वीं क्लास के इम्तहान के पर्चों की फिर से जांच और तस्दीक के लिए जो वक्त दिया गया था, उसमें 3,08,000 से ज्यादा इम्तहान के पर्चों के लिए 1,60,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की हैं। बोर्ड ने कहा है कि वो शिकायत के अजाले के अपने निजाम हेल्पलाइन नंबर और दीगर मवासलाती वसीलों के जरिए तलबा की तमाम हकीकी शिकायतों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आखिर में

लता मंगेशकर की आवाज में तलाश फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे। हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी को सुनिए। फिल्म का नाम है अमन।

मंगेशकर की आवाज में ये नगमा था परख फिल्म से। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हेमंत कुमार की आवाज में है, फिल्म है 16 साल।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम कहकशां। आज की फिल्म है मुझसे शादी करोगी। फिल्म की कहानी को तरतीब दिया है मोहतरमा राज हिमानी ने।

समीर यानी सलमान खान के पैदा होने के कुछ अरसा बाद ही उसके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था, लिहाजा उसकी परवरिश उसकी दादी माँ यानी शशिकला ही करती है। वो भी पोते की जन्म कुंडली के बारे में पंडित जी से पूछती है तो वो बताते हैं कि आपके पोते पर सूर्य ग्रह का असर है, ये बड़ा होकर जुबान कम और गुस्से ज्यादा चलाएगा। पंडित जी पोते का नाम समीर रखते हैं, समीर यानी ठंडी हवा का झोंका, मगर बड़ा होने पर समीर का मिजाज हवा के ठंडे झोंके के बजाय आग के गर्म शोले जैसा होता है। वो अक्सर सुकून के लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट किया करता है, यहां तक कि एक दिन तो गुस्से में आकर वो अपने सुकून के प्रिंसिपल पर भी हाथ उठाता है। जब भी समीर को गुस्सा आता है तो उसका अजीज दोस्त अरुण उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करता है, मगर गुस्से मिजाज वाले समीर पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता। समीर के उल्टी सीधी हरकतों से आजिज आकर प्रिंसिपल समीर की दादी से उसकी शिकायत करता है। वो कहता है कि इसका अभी से ये हाल है तो जवान होने पर कैसा होगा। दादी माँ परेशान हो जाती है। दादी माँ की परेशानी तब और बढ़ जाती है जब समीर जवान होने पर एक दिन एक गुंडे की खूब पिटाई करता है, क्योंकि उसने समीर की महबूबा को छेड़ दिया था। जब सजा के तौर पर समीर को कोर्ट में लाया जाता है तो वो फिर कहता है कि किसी भी लड़के को बदतमीजी करने पर वो फिर उसे पीटेगा। पढ़ाई खत्म करने के बाद समीर लाइफ गार्ड की नौकरी करने के लिए गोवा जाना चाहता है। दादी माँ उसे जाने की इजाजत दे देती है और कहती है कि वादा करो कि तुम अब आइंदा कभी लड़ाई झगड़ा और मारपीट नहीं करोगे। समीर दादी की कसम खाकर वादा करता है और गोवा के लिए रवाना हो जाता है। जाते जाते वो दादी से कहता है कि उससे उनकी बहुत फिक्र रहती है, क्योंकि अभी उनकी आंख का ऑपरेशन करवाना है, बहन को पढ़ाना है और उसकी शादी करनी है। दादी बच जाते वक्त उसे बहुत दुआएं देती है। समीर ट्रेन के जिस डिब्बे में बैठा है उसी में रानी यानी प्रियंका चोपड़ा के मामा मामी भी बैठे हैं। समीर रात भर जाकर उनके सामान की रखवाली करता है। गोवा पहुंचने पर समीर की मुलाकात राज नाम के एक ज्योतिषी से होती है। राज ज्योतिषी यानी राजपाल यादव की पेशेंगोई अक्सर गलत निकलती है। समीर राज के साथ दुगल यानी कादर खान के मकान में किराए पर कमरा लेने के लिए आता है। ज्योतिषी समीर को बताता है कि दुग्गा के दिमाग में कुछ क्लॉट्स जम गए थे, इसलिए वो कभी अंधे हो जाते हैं तो कभी बहरे। समीर को दुग्गा की इस बीमारी का सबूत भी देखने को तभी मिल जाता है क्योंकि वो कभी समीर को बंसी दूध वाला समझकर दूध लाने को कहता है तो कभी राज ज्योतिषी को ही बंसी समझ लेते हैं। बाद में बातचीत करने के बाद दुग्गा समीर को कमरा किराए पर दे देता है। दुग्गल के घर के ठीक सामने कर्नल साहब यानी अमरीश पुरी का फ्लैट है, जिसमें वो अपनी इकलौती बेटी रानी के साथ रहते हैं। उन्हीं के साथ उनका प्यारा कुत्ता टॉमी भी रहता है, जिसे कर्नल और रानी बहुत प्यार करते हैं। समीर जैसे ही अपने कमरे की खिड़की खोलता है तो सामने का नजारा देखकर उसके दिल की घंटी टन टन बोलने लगती है। वाह क्या नजारा था। खिड़की के ठीक सामने कर्नल साहब की लाडली हसीन नाजनीन रानी खड़ी थी। खूबसूरत और जवान रानी को देखते ही समीर उस पर फिदा हो जाते हैं। उसे पहली

यजन उससे प्यार हो जाता है। समीर राज से कहता है कि वो उस हसीना से उसकी मुलाकात करवा दे। राज ज्योतिषी उसे रानी तक पहुंचने की तरकीब बताता है, मगर समीर की किस्मत उसका साथ नहीं देती और रानी और उसके अब्बू का दिल जीतने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। कर्नल साहब का दिल जीतने के लिए वो जो भी तरकीब बनाता है वो फेल हो जाती है, और बजाय कर्नल साहब को इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत ही डिप्रेस हो जाता है। नतीजतन फूटी किस्मत और टूटा दिल लिए रानी का ये महबूब सिर्फ ख्यालों में ही रानी के साथ नाचता गाता है।

इधर समीर का अपनी महबूबा रानी से इश्क अभी परवान भी न चढ़ पाया था कि एक लड़का सनी यानी अक्षय कुमार उसके प्यार में आग लगाने आ पहुंचा। दुग्गल सनी को उसी के कमरे में उसका रूम पार्टनर बनाकर बतौर किराया रख लेता है, यानी अब आधा कमरा समीर का था तो आधा सनी का। जब कमरा एक और किरायेदार दो हो और वो भी अलग अलग तबीयत के और शौक वाले तो नोकझोंक तो होनी तो लाजमी थी। समीर को अक्सर दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगाने में दिलचस्पी रहती है तो सनी को फिल्मी अदाकारों की। सनी खिड़की खोलकर सामने वाली हसीना रानी के हुस्न का दीदार करना चाहता है मगर समीर को ये सब पसंद नहीं। वो सनी पर गुस्सा होता है तो समीर से पूछता है कि ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना कमरा गर्म हो जाएगा। सनी जब मकान मालिक दुग्गल को शरीफ लड़का कहता है तो समीर उसकी बेअदबी पर नाराज होकर कहता है कि वो इस कमरे में उसके साथ नहीं रहेगा, मगर उसकी हर टोका टाटी का सनी खुद ही जवाब देता है और आधा कमरा उसका है। अब ऐसे में बेचारा समीर करे भी तो क्या करे, हर थक को वो मन

कर रह जाता है। उधर रानी के इश्क के चक्कर में समीर और सनी दोनों कर्नल साहब को पटाने के चक्कर में रहते हैं। अगर समीर कर्नल साहब को इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकता है तो भला सनी इस मुहिम में पीछे क्यों रहता है? वो भी रानी के साथ अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत करना चाहता है। लिहाजा एक दिन कर्नल को पता नहीं, वो उनके फ्लैट पर पहुंच जाता है और उनकी गर्दन में आए झटके को मसाज करके ठीक कर देता है। ये झटका समीर की वजह से ही कर्नल की गर्दन में आया था। कर्नल सनी से खुश हो जाता है और समीर को बड़ा बुरा कहता है। बस फिर क्या था, बाप खुश तो बेटी तक पहुंचना मतलब कौन सा मुश्किल काम था। सनी दौड़ता हुआ अपनी महबूबा के पास पहुंचता है। जोशी जब समीर को सनी रानी का ये रोमांटिक नजारा खिड़की से दिखाता है तो वो जलभून जाता है। अच्छा तो रूम शेयर करने के साथ साथ ये सनी का बच्चा उसके महबूबा को भी शेयर करने लगा। वो दांत पीस कर रह जाता है क्योंकि उसने गुस्सा न करने की कसम जो खा रखी थी। उधर एक रोज समीर को जब पता चलता है कि उसकी चाहत रानी फैशन शो में हिस्सा लेना चाहती है मगर एंट्री फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो बहन की शादी के लिए जोड़े हुए पैसों से चुपचाप रानी की एंट्री फीस भर देता है मगर वो रानी को इस बात का इल्म नहीं होने देता है। उधर सनी पर भी रानी की जवानी का सुरूर हरदम चढ़ा रहता है। समीर और सनी ख्यालों में ही रानी से अपने इश्क का इजहार करते हैं।

रानी से दिल ही दिल में इश्क करने वाले समीर अपनी गल्ला तोड़कर उसके फीस चुपचाप भरता है, मगर दूसरी तरफ चालाक सनी इस बात का क्रेडिट खुद ले लेता है। उसके लच्छेदार बातों में आकर रानी समझती है कि उसे फीस के लिए पैसे सनी ने ही दिए हैं। रानी उससे इंप्रेस हो जाती है। एक रोज सनी और समीर एक डांस शो देखने के लिए जाते हैं। जब फैशन शो में रानी को पहला इनाम दिया जाता है तो अपनी इस कामयाबी पर खुश होकर वो अपने उस अनजान दोस्त को स्टेज पर बुलाती है जिसने उसकी एंट्री फीस जमा की थी। मगर इससे पहले कि समीर स्टेज पर जाता है, सनी वहां पहुंच जाता है। रानी खुश होकर सनी को गले लगा लेती है। एकदम यानी इश्क के इस खेल में एक बार फिर समीर बाजी हार जाता है। रानी सनी के साथ चल देती है तो जरा बुना समीर मोटरसाइकिल से उन दोनों का पीछा करता है। पर हाय जी किस्मत, गुस्से और जल्दबाजी में एक बार फिर वो कर्नल से टकरा जाता है और कर्नल को चोट लग जाती है। पहले से खफा कर्नल उसे अब खूब गालियां देते हैं। ये देखकर रानी भी उसे खुद से दूर करने को कहती है। बेचारा समीर का दिल एक बार फिर टूट जाता है, मगर रानी के लिए उसकी चाहत फिर भी कम नहीं होती। वो ख्यालों में रानी को देखता है।

करना का कुत्ता टॉमी अचानक गायब हो जाता है जब महबूबा के बाप का कुत्ता खो जाए और महबूब उसे ढूंढ लेना, भला ऐसे कैसे हो सकता था। समीर कर्नल को खुश करने की कोशिश में टॉमी को ढूंढने निकलता है। अलबत्ता समीर ये कोशिश नहीं करता क्योंकि कुत्ते को तो उसने गायब किया था। मगर जब वो देखता है कि समीर ने कुत्ता ढूंढकर कर्नल को दे दिया तो उसे शक होता है। और अब जब उसने देख लिया कि ये तो डुप्लीकेट टॉमी है, वो कर्नल को कहता है कि उसे रगड़ कर नहलाए। नहलाते ही टॉमी के माथे पर लगा रंग निकल जाता है जिसे समीर ने लगाया था। तो कर्नल की खुशी गुस्से में बदल जाती है। वो समीर को खूब गालियां देता है। रानी की खातिर कर्नल को खुश करने की ये आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है। जब समीर मायूस हो जाता है वो दादी माँ को सारी बात बताता है कि वो रानी को दिलो जान से चाहता है, मगर उसके अब्बू उससे बहुत नफरत करते हैं। पोते की परेशानी देखकर दादी माँ से रहा नहीं जाते हैं और वो कर्नल के पास जाकर समीर और रानी के प्यार के बारे में कहती है और कहती है कि समीर रानी से शादी करना चाहता है। कर्नल जब रानी से पूछता है कि तुम्हें समीर पसंद है या समीर, तो रानी कहती है उसे तो दोनों ही पसंद है। ख्यालों में समीर, सनी और रानी तीनों ही नाचते गाते हैं।

समीर से अब रहा नहीं जाता, वो खुद कर रानी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए पूछता है कि मुझसे शादी करोगी? रानी हाँ कहती है तो समीर खुश हो जाता है, और सनी वो भी कम खुश नहीं था, क्योंकि दरअसल सनी तो समीर का वो बचपन का दोस्त अरुणित था, जो काफी साल पहले विदेश चला गया था। वो तो गोवा में सिर्फ समीर का साथ देने के लिए आया था। रानी को सनी ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। समीर और सनी को बचपन की बातें याद आती हैं, दोनों खुशी में गाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कहकशा प्रोग्राम के तहत मुझसे शादी करोगी फिल्म के कहानी और नगमे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है फिल्मी नगमे।

मिले, उसके खजाने मिले, दिन के बहाने

अभी आप सुन रहे थे तोहफा फिल्म का नगमा। आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। आइए सुनते हैं शराबी फिल्म का नगमा किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

सुनिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय से तरगीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद को पिछले 12 साल में सरकार की पॉलिसी में बुनियादी मकाम हासिल रहा है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिजाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया बहरान फिर से बढ़ गया है। फिलीपींस के जनूबी खित्ते मांडियानों में आज सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के ताकतवर जल्जिले के सबब 16 अफराद हलाक हो गए। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। और न्यू चंडीगढ़ में खेले गए वाहिद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 1 इनिंग्स और 300 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए बहबूद के सरकार के 12 साल के सफर को उजागर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां आई हैं और इन तब्दीलियों में गरीब कल्याण और महरूम तबकों को बुनियादी मकाम हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने हमेशा अंत्योदय से तरगीब हासिल की है और हमेशा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि तरक्की के फायदे उन लोगों तक भी पहुँचे जो कई दहाइयों से पिछड़े हुए थे। वजीर आजम ने कहा कि लोगों की अजमत वक़ार और मौक़ों को यकीनी बनाने के मकसद से जन धन अकाउंट्स फ़ायदों की बराए मुंतकली, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम किए गए। जनाब मोदी ने कहा, गरीबों के बेहतर मीयार ज़िंदगी को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम रोल अदा किया है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर फिर से मिसाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में बहरान बढ़ गया है और जंग बंदी भी खतरे में पड़ गई है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने इसराइल के अहम ठिकानों पर कई हमले किए। इनमें इसराइल के सबसे अहम 2 फिजाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन नसर का नाम दिया गया है। मीडिया इतलात के मुताबिक 3 अलग अलग मकाम पर इसराइल के मिजाइल हमलों में ईरान के राडार मराकज को निशाना बनाए जाने के जवाब में ईरान ने कार्रवाई की है। उधर इसराइली फौज ने जुनूब मगरबी ईरान में एक बड़े सनती ठिकाने पर फजाई हमले करने की बात की तस्दीक की है। इसराइल की दिफाई फौज ने ईरान के कलीदी अहमियत के हामिल साहिली इलाके में मशार में वाकई एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में कई ठिकानों पर हाल ही में हमले किए थे। इस तरह जंग खत्म करने की कोशिश के ताल्लुक से गैर यकीनी कैफियत पैदा हो गई है। ये लड़ाई इस साल 28 फरवरी को शुरू हुई थी। फिलीपींस के जनूबी खित्ते मिंडानियों में आज सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के ताकतवर जल्जले के सबब 16 अफराद हलाक और 200 जख्मी हो गए। जनरल सेंतोस शहर में कुछ इमारतें मुनहदिम हो गई और आम बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कम से कम एक साहिली गांव में सुनामी से हुए नुकसान की भी इत्तला मिली है। इंडोनेशिया और पलायू और यहां तक के जनूबी जापान में भी सुनामी के सबब छोटी लहरें देखी गईं। जलजले का मरकज मिनाडानो जजीरे के जुनूब मगरिब से 33 किलोमीटर के फासले पर था। इसकी गहराई 32 किलोमीटर थी। जलजले के झटके इंडोनेशिया के शुमाली सलावेसी और शुमाली मुलुकों में सूबे में भी महसूस किए गए। भारत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इस महीने की 9 तारीख से 13 तारीख तक ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्क ग्रुप और ब्रिक्स जराई वजरा की अहम मीटिंगों की मेजबानी करेगा। आज भोपाल में एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जरात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मीटिंगें इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक्किद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स एक ताकतवर आलमी प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स मेम्बर ममालिक के पास दुनिया की कुल जरिए आराजी का 42% हिस्सा है। निज आलमी गजाई अशिया का 45% हिस्सा ही ममालिक पैदा करते हैं। जनाब चौहान ने एतमाद का इजहार किया कि मीटिंगें ब्रिक्स जरिए ताउन को नई समत अता करेंगी। मीटिंग किसानों की आमदनी, रोजगार, जरिया माज, जरिए कर्जे और मार्केट तक रसाई पर मरकोज होगी। खुराक की यकीनी फरहमी, जरिए तजारत, मौसमियाती मवाक़ और जरिए इख्तराज मीटिंग के अहम मौजूद होंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग 2 रोजा सरकारी दौरे पर शुमाली कोरिया पहुंचे हैं। ये जनाब शी जिनपिंग का तकरीबन 7 बरसों में पियोंगयांग का पहला दौरा है। चीनी सदर के इस दौरे का मकसद अपने देरीना साथी शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है, जो हालिया बरसों में रूस के साथ ज़्यादा करीब हो गया है। तवक्को है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के दौरान इक्तिसादी ताउन, कोरियाई जजीरानुमा से वाबस्ता सिक्योरिटी के मामला तो शुमाली कोरिया चीन और रूस के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी मनुष्यात की स्मगलिंग के नेटवर्क से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिजोरम, म्यांमार सरहद, त्रिपुरा, बांग्लादेश

0: फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लगान फिल्म से थी। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक और साथियों की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबर।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका हमारे आज के इस अंक में, जिसका आगाज हम करेंगे विश्व महासागर दिवस से आज की बात के साथ। दोस्तों, विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हम सभी को महासागरों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत है और ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग महासागरों से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। श्रोताओं, विश्व महासागर दिवस की शुरुआत सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पृथ्वी सम्मेलन में की गई थी, जबकि इसे आधिकारिक मान्यता सन 2008 में मिली थी। तब से हर वर्ष 8 जून यानी आज ही के दिन ये दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न देशों में कार्यक्रम, सेमिनार और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं, ताकि हम सभी महासागरों के संरक्षण के महत्व को समझ सके। साथियों, महासागरों को बचाने के लिए हमें कई कदम उठाने चाहिए, जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पुनः उपयोग करना, कचरे का सही निपटान करना होगा, समुद्र में गंदगी और रसायन डालने से रोकना होगा, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षारोपण करना होगा, सभी में समय समय पर जागरूकता भी फैलानी होगी और सरकार द्वारा कड़े कानून भी लागू करने होंगे। मित्रों, महासागर पृथ्वी का जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। ये हमें भोजन, ऑक्सीजन, रोजगार और जलवायु संतुलन प्रदान करते हैं, लेकिन आज मानव गतिविधियों के कारण महासागर खतरे में हैं। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज सावधान नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए महासागर बचाओ, जीवन बचाओ का संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, चर्चा और भी करेंगे, आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म शेषनाग का ये गीत।

बात करते हैं हमारे जीवन में विचारों के महत्व की। दोस्तों, हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाने की सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों में ही होती है। हमारे विचार ही हमारे चरित्र, आचरण और अस्तित्व को आकार देते हैं। जिस प्रकार जड़ों से ही पेड़ को पोषण मिलता है, उसी प्रकार विचार ही हमारे जीवन का आधार बनते हैं। श्रोताओं, हमारे जीवन में दो प्रकार के विचारों का समन्वय पाया जाता है, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार मनुष्य को सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। अच्छे विचारों से मन में उत्साह, आत्मविश्वास और शांति बनी रहती है। नकारात्मक विचार मनुष्य को निराशा, आलस्य और असफलता की ओर धकेलते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसे विचार वैसा व्यवहार। मित्रों, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जो व्यक्ति ऊंचे और महान विचारों को अपनाता है, उसका जीवन भी महान बन जाता है। विचार ही मनुष्य को लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। जिस समाज और राष्ट्र के नागरिक उच्च विचारों वाले होते हैं, वो समाज और राष्ट्र निरंतर प्रगति करता है। महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर सभी ने अपने श्रेष्ठ विचारों से न केवल अपना जीवन संवारा, जबकि पूरे विश्व को नई दिशा भी दी। दोस्तों, विचार वास्तव में जीवन की जड़ें हैं। यदि विचार शुद्ध, सकारात्मक और उच्च हो तो जीवन सुखमय और सफल बनता है। अतः हमें सदैव अच्छे विचारों को ही अपनाना चाहिए और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विचार ही हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। तो साथियों, बातें तो चलती रहेगी, अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म खट्टा मीठा का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मोबाइल में उलझी युवा पीढ़ी की। श्रोताओं, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल फोन इस तकनीकी क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण है। मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। इसके माध्यम से हम किसी से भी तुरंत बात कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग ने युवा पीढ़ी को एक नई समस्या में उलझा दिया है। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल फोन की अत्यधिक आदी होती जा रही है। कई छात्र अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और वीडियो देखने में बिताते हैं। इसके कारण इनका पढ़ाई पर ध्यान कम हो जाता है। वे बाहर खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं, जिससे इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, मोबाइल का अधिक उपयोग मानसिक तनाव और आंखों की समस्याओं को भी बढ़ा रहा है। देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद पूरी नहीं होती, जिससे दिन भर थकान महसूस होती है। साथ ही सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से तुलना करने के कारण कई युवा आत्मविश्वास की कमी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि मोबाइल के कई लाभ भी हैं। ये शिक्षा, संचार और ज्ञान प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। यदि इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इस समस्या का समाधान यही है कि युवा पीढ़ी को मोबाइल का सीमित और सही उपयोग करना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों को भी बच्चों को इसके सही उपयोग के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। साथ ही खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि मोबाइल एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग युवा पीढ़ी को भटका सकता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम इसे अपने जीवन का सहायक बनाएं, न कि आदत। तो दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए एक बार फिर चलते हैं रंगमंच की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म मिशाल का ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों आइए अब बात करते हैं बीकानेर जिले की। श्रोताओं, बीकानेर रियासत प्राचीन काल में जंगल प्रदेश के नाम से जानी जाती थी। कुछ लोग इसे राती घाटी भी कहते हैं। बीकानेर शहर की स्थापना सन 1488 में जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र राव बीकाजी ने की थी। बीकानेर जिले में अनेक पर्यटन स्थल हैं जो यहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं। तो आइए बात करते हैं इन पर्यटन स्थलों की, जैसे जूनागढ़ का किला। साथियों, इस किले को कभी कोई शत्रु जीत नहीं पाया था। सन 1588 ईस्वी में सम्राट अकबर के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित जनरल राजा रायसिंह द्वारा इसे बनवाया गया था। ये किला पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसमें लगे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियाँ, छतरीनुमा मंडप व खिड़कियाँ अपनी अद्भुत कला को दर्शाती है। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र, मित्रों ये बीकानेर जिले के जोहड़बीड़ गांव में स्थित है। एशिया महाद्वीप का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहां ऊँटों का रखरखाव, ऊँट पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधित कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर दूर ये केंद्र 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर बना है और इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भांडासर के जैन मंदिर। दोस्तों, जैन धर्म के 5वें तीर्थकर सुमेधीनाथ को समर्पित ये मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसमें कांच का सुंदर जड़ाऊ काम, भित्ति चित्र व सोने के पत्रों से बने चित्र दर्शनीय हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। तो मित्रों, चर्चा और भी करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म कल हो ना हो का ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे बीकानेर जिले के पर्यटन स्थलों की, जैसे करणी माता मंदिर। श्रोताओं, दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला ये मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनो गांव में है। ये मंदिर पर्यटकों में टेंपल ऑफ रेट्स के नाम से मशहूर है। यहाँ लगभग 25,000 काले चूहे हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। मंदिर में सफ़ेद चूहे के दर्शन महाकर्णी के दर्शन माने जाते हैं।

कोडमदेसर भैरू जी मंदिर। मित्रों, राव भीकाजी द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। जोधपुर से आने के 3 वर्ष बाद राव भीकाजी ने कोडमदेसर भैरू जी की स्थापना यहां पर की थी। प्रारंभ में स्थल को बीकानेर की नींव रखने के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में ये विचार बदल दिया गया। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर। साथियों, भगवान लक्ष्मीनाथ यानी विष्णु भगवान को बीकानेर शासकों ने अपना कुल देवता माना और खुद को उनके दीवान एवं मंत्री के रूप में माना है। इस मंदिर का निर्माण संगमरमर और लाल पत्थरों से किया गया है। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जैकब द्वारा की गई थी। ये महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। देवी कुंड सागर। श्रोताओं, ये बीकानेर के राज परिवार का शाही शमशान घाट है। यहाँ पर बीकानेर शासकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। यहाँ अनेक छत्रियाँ बनाई गई है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट छत्री महाराजा सूरज सिंह की बनी है, क्योंकि ये छत्री पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित की गई है। तो मित्रों, ये थे बीकानेर जिले के मशहूर पर्यटन स्थल। बातें तो चलती रहेगी, कार्यक्रम में अब समय एक गीत का है। लीजिए, अब सुनिए फिल्म साजन की सहेली का ये गीत।

ही सोची थी, ना वैसी जैसी चाही थी, बस जैसी मिल रही है वैसी ही जी जा रही है। कभी हंसी के दो पल मिल जाते हैं तो कभी बिना वजह आंखें भर आती है। कभी सब अपना सा लगता है तो कभी भीड़ में भी अकेलापन घेर लेता है। ख्वाब अभी भी है पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत थोड़ी सी कम पड़ जाती है और जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि खुद के लिए वक्त भी कम रह गया है। लोग बदलते गए, हालात बदलते गए और हम हर बार खुद को थोड़ा थोड़ा बदलते गए। जिंदगी चल रही है कभी संभल कर कभी बिखर कर, पर रुकती नहीं। शायद इसीलिए हम भी रुकना नहीं सीख पाते हैं। तो साथियों, युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए एक बार फिर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत।

पूरा करने की हिम्मत थोड़ी सी कम पड़ जाती है और जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि खुद के लिए वक्त भी कम रह गया है। लोग बदलते गए, हालात बदलते गए और हम हर बार खुद को थोड़ा थोड़ा बदलते गए। जिंदगी चल रही है, कभी संभल कर कभी बिखर कर, पर रुकती नहीं। शायद इसीलिए हम भी रुकना नहीं सीख पाते हैं। तो साथियों, युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए एक बार फिर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1658 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा भी किया था। 8 जून के दिन ही सन 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। सन 1948 में भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा भी आज ही के दिन शुरू की थी। मित्रों, 8 जून के दिन ही सन 2004 में 122 वर्षों के बाद शुक्र ग्रह का पारागमन जैसी खगोलीय घटना का अद्भुत नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा था। आज ही के दिन विश्व महासागर दिवस व विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। 8 जून के दिन ही सन 2009 में मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन भी हुआ था। तो दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए चलते चलते सुनते हैं फिल्म एक ही भूल से ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुनिए।

अब से कुछ ही समय पश्चात यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की भाषा का कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हिंदी में 6:30 पर और राजस्थानी में 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल संध्या 7:00, जिसमें जानकारी दी जाएगी मिट्टी जांच का पीएच मान कैसे देखें, बकरी पालन और वृक्षारोपण पर। साथ ही राजस्थानी गीत और लोक भजन भी आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे। उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी आप तक प्रेषित की जाएगी।

स्पोर्ट्स कैन का समय रहेगा रात्रि 8:30। फिल्मी गीत आप सुनेंगे 7:45 पर और एक ही फिल्म से कार्यक्रम में रात्रि 8:00। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर और रात्रि 11:00। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा रात्रि 9:00 और रात्रि 11:05 पर। सुगम संगीत में कुछ गज़लें आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर।

पब्लिक स्पीक, यह कार्यक्रम सुनेंगे आप हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर। खेल जगत का समय रहेगा रात्रि 10:00, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कुछ और फिल्मी गीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

अभी आप कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 होने को हैं। समय सराइकी का है।

0: ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਥੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਕੂ ਖਤ ਘਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक

4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हित की विकास यात्रा बताया है। आज श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना, किंतु इस विकास यात्रा के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनहित योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति के विकास का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 5 जून से 21 जून तक 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में हो रहे इस समारोह में अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैठक कल से 13 जून तक इंदौर में होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की ये बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन आवासों में नल से जल, रसोई गैस और शौचालय की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने इसे लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ा बदलाव बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हुईं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 125 से अधिक

0: अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा आज समाप्त हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 3 प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 11 जून है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशियों ने आज अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण के समक्ष दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने उन पर भरोसा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
1: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा देके युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। CBSE ने मीडिया पर इस पोर्टल के काम नहीं करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक केवल वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव आलोक जैन ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट।
2: 8 जून का दिन देश की सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। साल 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्रों के माध्यम से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए दुनिया के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
0: राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों में आज कमी देखने को मिली और मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। एक ओर जहां श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पुष्कर में करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा बीते

0: 24 घंटों में अजमेर, बूंदी, कोटा, टोंक, झुंझुनू और भरतपुर में पानी बरसा। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 11 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार जताए हैं। इस दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारे में 2-3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की संभावना है। 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ सकती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम जारी हैं। इसके तहत लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए रोजाना सामूहिक योग और प्राणायाम सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
1: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना, ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं, शरीर से और मन से मजबूत होते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। चाहे हम पैदल चलें, चाहे हम सीढ़ियां चढ़ें, चाहे हम नियमित रूप से खाना खाएं, ऑयल कम करें अपने खाने के अंदर, ये सारी चीजें एक फिट इंडिया बनाता है, एक मजबूत भारत बनाता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गईं। 25 मई से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस तक चलाया गया। इस दौरान जल संरचनाओं की साफ सफाई, जल संरक्षण के कार्य, मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी कामों के साथ ही श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां रखी गईं। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने भी पौधरोपण कर पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। उन्होंने जाखम और भंवर सेमला बांध का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर मीडिया राउंड टेबल आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने परिंडे बांधे और पौधरोपण किया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन रखा गया। अभियान का समापन समारोह पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी की उपस्थिति में रखा गया। माही बजाज सागर बांध से पीपलखूट अपर हाई लेवल बहुउद्देशीय कैनाल परियोजना का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। 1565 करोड़ रुपए की लागत की इस अनूठी परियोजना में बिना भूमि अधिग्रहित किए पाइपलाइन डाली गई है। इसके जरिए जमीन से 3-4 मीटर की गहराई पर पानी बहेगा और ऊपर किसान खेती करेंगे। परियोजना के पूरा होने से प्रतापगढ़ सहित उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। लक्ष्य हासिल होने से अगली रबी फसल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं जल जीवन मिशन के लिए जाखम बांध तक पानी पहुंचने से प्रतापगढ़ शहर और उसके 554 गांवों के अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 1899 गांवों को पानी मिलेगा। जिले के करजू और रावतपुरा गांव में इन दिनों किसानों ने आधुनिक मल्चिंग तकनीक अपनाकर नकदी फसलों की खेती शुरू की है। इस तकनीक से टमाटर और मिर्च सहित अन्य नकदी फसलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को गर्मी के मौसम में बोई जा रही फसलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। इस साल अब तक जिले में ये 7वीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि इससे पहले भी एक अन्य तस्कर

करीब 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं। पुलिस ने अभियान के तहत नौगावा के देवलदी गांव स्थित चारागाह से भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और जल संरक्षण तथा पौधरोपण कार्यों का निरीक्षण किया। इधर जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की आयोजित हुई बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उन्होंने निर्देश दिए। सांसद सीपी जोशी ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बार अधिक मास के चलते जिले भर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर रहीं। मंदिरों और आश्रमों में अनुष्ठान हुए। अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्नान और दान पुण्य किए गए। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में आखा तीज के अबूझ सावे पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने

0: अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बार अधिक मास के चलते जिले भर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर रहीं। मंदिरों और आश्रमों में अनुष्ठान हुए। अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्नान और दान पुण्य किए गए। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में आखा तीज के अबूझ सावे पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। जिले में बीते दिनों मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी आंधी तो कभी बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को परेशान किया। वहीं बढ़ते तापमान और तपन ने भी लोगों को व्याकुल किए रखा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आई बारिश ने गर्मी का असर कम किया। इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश में राज्यसभा री 3 सीटा माथ चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो भयो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ने गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो है। श्री मोदी कहो के इन दौरान देश कई बदलावा रो गवाह बण्यो। प्रधानमंत्री कहो के जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत सरीखा हर जतन रो मकसद जनता सारू पूरा मानु जीवनु तय करनो है। श्री मोदी कहो के गरीब तबका री जनता री जिंदगी बेहतर बनावण माए प्रौद्योगिकी की खास काम कीनो है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई कहो के वानी डबल इंजन सरकार प्रदेश माए जनता रा भलारी योजनावा रे जरिए सेवा कर रही है। वे आज विधानसभा परिसर माए राखी जी विधायक दल री मीटिंग माए बोल रिया हा। श्री शर्मा कहो के प्रदेश माए आखिरी छोर ताई रा हर एक जनारो विकास तय करियो चाहियो है। ध्यान जोग है के राज्य माए 5-21 जून ताई 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलायो जा रियो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन माए रक्षा अलंकरण समारोह रा पहला दौर माए सशस्त्र बलारा और सुरक्षा कर्मचारियां रो मान कर रही है। जबरदस्त हिम्मत और समर्पण रो दर्शाव करण वाला जवाना ने इन कार्यक्रम माए वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण नवाजा जा रहा है। जलसा माए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स रा सदस्य देशां रा कृषि मंत्रियां री मीटिंग काल मध्य प्रदेश रा इंदौर माए शुरू फैला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल माए खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो के 13 जून ताई भेवन वाली मीटिंग री सदारत भारत करेला। श्री चौहान कहो के मीटिंग माए किसाना री आमदनी, काम धंधा, खेतीबाड़ी सारू कर्ज और बाजार ताई पहुंच बधावन रा जतन रे बारा माए चर्चा करी जावेला।
3: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी

0: बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आम मकाना में नल, पानी, रसोई गैस और शौचालय रा बुनियादी सुविधा मुहैया कराई चिया है। वे इनने गरीब परिवारों सारू मोटा बदलाव बतायो। केंद्रीय मंत्री कहो के लाडला 12 साल में देश में सगला रो विकास और तेजी उमफियो है। विपक्षी पार्टियां रा इंडिया गठबंधन री आज नई दिल्ली में मीटिंग भी। इनमाय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस रा आला नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी रा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस री अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रा नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट री सुप्रिया सुले शामिल फिया। जयपुर विकास प्राधिकरण री ओर आज जयपुर शहर में गैर कानूनी कब्जा हटावन री मोटी कार्रवाई करी जी। नंदपुरी अंडरपास रेलवे लेन रे बराबर री सड़क ने 80 फीट चौड़ी करण सारू चलाई जिया। ई अभियान रा तहत 125 बत्ता गैर कानूनी तौर करी जिया बनाई चुनाई रा काम हटाई जिया। ई दौरान एहतियातन 3000 बत्ता पुलिस वाला तैनात करी जिया, जदका कई हलका माय मोबाइल और इंटरनेट जुड़ी सेवाएं बंद रखी जी। जयपुर रा संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार का नियम जारी हुकम रे मुजब बेगोई आ हलका माय इंटरनेट पाछो चालन री संभावना है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव सारू प्रदेश 3 सीटा माथे चुनाव बाबत पर्चा दाखिल करण री मियाद आज पूरी फेगी। राज्य रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो के प्रदेश 3 उम्मीदवार 9 पर्चा दाखिल कीना। भारतीय जनता पार्टी री ओर डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर आज नाम पाना। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण सामी पेश कीना। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, हरजनता रा और कई नुमाइंदा मौजूद हा। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का श्री पूनिया वा माथे भरोसो करण सारू भाजपा रा केंद्रीय नेतृत्व रो आभार जतायो।
2: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा दे के युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
1: कांग्रेस पार्टी री ओर नीरज डांगी पहले पर्चो दाखिल कर चुका है। नाम 11 जून ताई पाछा लिया जा सके है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ई साल 12वीं कक्षा री परीक्षा सारू नंबरां रो सत्यापन करण और कॉपियां ओजू जंचावण सारू अर्जी देवण री विंडो 2-7 जून ताई लगातार चालते रहवण रो दावो कीनो है। बोर्ड रे मुजब इन दौरान 160,000 बत्ता विद्यार्थी 308,000 बत्ती कॉपियां सारू अर्जी दीनी। CBSE भ्रम दूर करता थका बतायो के रोल नंबर नॉट फाउंड री जानकारी रो कारण ई प्रक्रिया रा पहला दौर माय कॉपी री फोटोकॉपी लेवण री अर्जी नी देवणु हो। बोर्ड रे मुजब नियमा रे मुताबिक कॉपी री स्कैन कॉपी हासिल करण सारू अर्जी देवण वाला ही अगला दौर सारू पात्र वे है। राज्य री सरकारी स्कूलां माय गर्मी री छुट्टियां 28 जून ताई रहवेला। शिक्षा विभाग रा शासन उप सचिव आलोक जैन री ओर जारी हुकम रे मुजब गर्मी री छुट्टियां 17 मई 20 जून ताई 35 दिन री करी जी ही, जो अब बधार 43 दिन री कर दी री जी है। हुकम रे मुजब संस्था प्रधान री ओर एक री बजाय अब 2 दिन री छुट्टी दी जा सकेला। आज आकाशवाणी रा गौरवशाली 90 साल पूरा फेंक्या। साल 1936 में आज ही रा दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो नाम दियो चियो हो। पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट।
3: साल 1956 माए इनरो आकाशवाणी नाम दियो जियो। आज देशभर माए आकाशवाणी रा 551वां केंद्रा रे जरिए 23

0: भाषा वा अर 146 बोलिया माए कार्यक्रम प्रसारित करिया जावे है जो देश री 98 फीसदी आबादी ताई पूगे है। इस आगे ही आकाशवाणी रो विदेश सेवा विभाग दुनिया रा 100 देशा माए भारत री आवाज पुगारियो है। आकाशवाणी रो समाचार सेवा प्रभाग बहुजन हिताए बहुजन सुखाए रा आदर्श सागे रेडिया प्रसारण रा सब ऊंचा मानकारी पालना करता थका 2400 घंटा सगली भाषावा अर बोलिया माए समाचार अर समाचारों जुड़िया कार्यक्रम प्रसारित करे है।
1: अरब मौसम राज्य रो कई हल्का माए आंधी बारिश री हलचल आज थोड़ी कम रही। इन कारण श्रीगंगानगर माए पारो 44 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। जैसलमेर माए जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दूजिकानी अजमेर कन्ने पुष्कर माए करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। लाडला 24 घंटा माए अजमेर बूंदी कोटा टोंक झुंझुनू और भरतपुर माए में बरसियो। मौसम विभाग 11 जून ताई आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए कमी रा आसार जताया है। इस दौरान उगनी और उत्तराद उगनी हलका रे अलावा मौसम सुखो रेवन री संभावना है। राज्यरा आतुनी हलका माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चटबारा आसार है। 21 जून न मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम चल रहा है। इन तेत जीवन रा स्वस्थ तरीका न बधावो देवन रा मकसद रोजिना योग और प्राणायाम रा सत्र रख्या जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनताओं आ कार्यक्रम में माय भागीदारी करण री अरज कीनी है।
2: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं शरीर से और मन से मजबूत होते हैं तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है।
1: आखिर माय खास समाचार एक कर फेरु सुन ली राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लाडला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तेज हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो भियो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98 फीसदी आबादी ताई पहुंच। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।

0: लव स्टोरी का।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 7 बजने को हैं। ग्रामीण श्रोता सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनिए सगळ्या श्रोतावाने, सुनील बायगी वरशू मोकली मोकली राम राम। चौपाल गीत जाजम पर सगळ्या श्रोतावांगो घणे मानशू घणे हर्कशू स्वागत है। श्रोताओं, ईश्वर शिवाई प्रार्थना है के सग हर भाईगो जको लाणो बाणो है वो ताजो मोटो रवे, निरोग रवे, हंसतो खेलतो रवे। श्रोताओं, समय बड़ो बलवान है, समय की मार्ग आगे कोई बच नहीं पायो और सदा एक सौ टेम भी कौन रहे, टेम बदलतो रहे, कदी अच्छो आ जाए कदी माड़ो आ जाए। समय पर छोटी सी एक कविता है, सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न

जग में जीवनार सदा न काला केस। सदा न फूले केत की सदा न सावण होय, सदा न विपदा रह सके सदा न सुख भी होय। सदा न मौज बसंतगी सदा न ग्रीष्म बाण, सदा न जोबन थिर रहे सदा न संपत माण। सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाँ, डलते डलते डल गई तरवरगी सी छाँ। तो समय जको है कदी एक सौ कोनी रहे, बदल तो रहे। समय की आपने हमेशा ही कदर करनी चाहिए और समय गए सागे भी चालनो चाहिए। समय का सागे चालन को मतलब ओ है कि आप आज को टेम जिया आधुनिक टेम है, तो आधीन टेम का आप सागे चालां, पढ़ा लिखा, अच्छा विद्वान बना। पर एक बात और ध्यान में रखा कि अपनी जकी संस्कृति है, अपना जका संस्कार है, रीति रिवाज है, अपनी जकी जड़ा है, बांशवा आप जुड़ी डरवा। आधुनिकता के रंग में रंगे आपा अपना जका सभ्याचार है, मेल मिलाप है, रीति रिवाज है, खान पान है, वेशभूषा है, इनको भी आपा मान सम्मान करा। अपनी जकी आने वाली पीढ़ी है, इन्हें भी आपा वो संदेश देवा, अन सिखावा सभ्याचार सिखावा, वो कौन है, बाबू है, दादो है, नानू है, वो बतावा, राम राम करनी सिखावा, और बडेरों को किया मान करी जाए, वह बात भी आपा अपने टाबरान देनी चाहिए, सिखानी चाहिए। समय के सागे सागे चालनो वो कदी को नहीं कि आपनी जकी विरासत है, अपनी जकी जड़ा है मन भूलां, अपनी माटी ने भूलां। तो समय के सागे जरूर चालो, पर आपकी जड़ा से भी जुड़े रहो। बात आप और स्वीकर्षा पहला सुनाओ प्यारो सो लोक गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ चौपाल में दोबारा से स्वागत है। थे सुन लाग रहा हो आकाशवाणी सूरतगढ़ कोटिन सिटी चैनल और मैं उथरु भाई सुनील। श्रोताओं आपनों जो मुख्य धंधो है ग्रामीण भाइयों को वो है खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी के साग साग अपना जका भाई है कई पशुपालन भी करे, बकरी पालन करे, गाय पालन करे, मुर्गी पालन करे। तो बात करा जिया बकरी पालन के बारे में जो एक बहुत ही सफल व्यवसाय है। श्रोताओं जो कि बकरी है बाकी है गरीब की गा कही जाए और अपने ग्रामीण क्षेत्र में जका कई गरीब भाई है या और जका है वे छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर बकरी पालन करें। ग्रामीण जकी अर्थव्यवस्था है आ पशुपालन में बकरी पालन पर बहुत निर्भर है। आजकल जका कमजोर वर्ग है एक या छोटे समूह में बकरी पालन करें। बकरी की जिया आप बात करा मुख्य नस्लों की तो आपने ठे सिरोही है राजस्थान के अंदर मारवाड़ी है जमुनापारी जकराना जिसी प्रमुख नस्ल है। जे आप सही देखभाल करा अने टेमो टेम अच्छो खाणो पीणो दिया संतुलित आहार देवा अंगू पूरो प्रबंधन रखा तो आपने खातर वो जो व्यवसाय है बकरी पालन को वो बहुत ही लाभदायक हो सके। बकरी पालन से आपने जिया दूध बेच के आप आय प्राप्त कर सका। दुधारी जकी बकरियां हैं बन बेच के भी आप आय प्राप्त कर सका। मांस बेच के ऊन और खाल बेच के

और जकी गी खाद है यानी जकी गी मिंगणियाँ हैं बकरी की, वे भी आप बेच के आय प्राप्त कर सकेंगे। जकी मिंगणियाँ हैं किसान भाइयों अपनी खेती खातर बहुत ही लाभदायक है। बकरियां खातर आप आवास की व्यवस्था की बात करा तो जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू है, बकरी सारू आपने जो स्थान चाहिए वो की तो की अच्छे आदार होने चाहिए, ढकेड़ होने चाहिए, और की स्थान जो है यानी खुल्लो होना चाहिए जटे चारे की पानी की और बहुत प्रबंध हुए। और आप जो बाड़ो बनावा किसान भाइयों वो की है अगुण अथुण बनाना चाहिए यानी पूर्व और पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए ताकि आपने जो कि सूरज की जो कि किरणा है सीधी बाड़े पर न पड़े मीनू बारह ने बचा सका। आपने एक बकरी सारू लगभग किए एक शू डेढ़ वर्ग मीटर स्थान की जरूरत है। नर जका बकरा है छोटा बच्चा है दुधारू जो की बकरियाँ हैं ऐर जका बीमार पशु हो जाए तो बन की है सारा खातर अलग अलग आवास होना चाहिए ताकि वे बैठे आराम से रह सके और मांगो आप ध्यान रख सका। सफाई व्यवस्था की आप बात करा तो बकरियां की है समूह गमा झुंड गमा रूण पसंद करे, इन सारू आने साफ सफाई की जरूरत है ताकि हमें बीमारियां न फैले। आगा जका बर्तन है ठाण है खेली है बन आपने नियमित रूप से किसान भाइयों साफ करना चाहिए और जकी मींगणी करे अंगू निस्तारण रोजाना करना चाहिए और बाड़े से दूर जागे एक खड्डो आपने बना लेना चाहिए और भी में वे मींगणियाँ ना करनी चाहिए और टेमो टेम आपने सफाई करनी चाहिए। अब जकी पानी की व्यवस्था है वह भी अच्छी तरह रखनी चाहिए। किसान भाइयों जकी अपनी बकरी है इन अंदर अंतजीवी और परजीवी जका हो वे लाग जाए जका कि बाहर रेवे और कि अंदर रेवे और बे बकरी को खून चूस के नुकसान पहुँचावे। बाह्य परजीव जियाँ चिंचड़ है जू है आंगो जद प्रकोप हो जाए किसान भाइयों तो की है आपने दवाई को छिड़काव करना चाहिए और आने खत्म करना चाहिए। इशू की है जो बकरी को दूध उत्पादन है मांस उत्पादन है बिंग ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़े। और दूसरी बात है जहाँ अंदर का परजीवी है जका पेट का मां रेवे और जो कि आहार नाल है बिना नुकसान पहुँचावे या जो आप दाणो पानी दियाँ खुराक देवा जकी बे किए बे जका अंदर का कीड़ा है नहीं बे खा गए खत्म कर दिए तो बा अपनी खुराक एड़ी उड़ जाए साग जको पशु है वो बीमार रहने लग जाए क्योंकि बिंगा की है खायो पियो अच्छी तरह लग गए कोनी कमज़ोर हो जाए बिंगो दूध उत्पादन है जको वो प्रभावित हो जाए या बच्चा देनगी जकी क्षमता है वह भी कम हो जाए तो जका अंत परजीवी है अंगो टेमो टेमा पाने की है नियमित अंतराल से जकी कृमि नाशक दवाइयाँ आवे बे देगे और रंगों का आत्मो करना चाहिए। और टीकाकरण भी बकरी व्यवसाय में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बकरियां में कई ईशा रोग फैल रहा है कि पूर्व बाड़ों को बाड़ों खत्म हो जाए जहाँ फिड़किया रोग है माता रोग है मुँह पका खुरपका है तो ये बहुत ही भयंकर संक्रामक रोग है अन रोकनो बहुत ज़रूरी है तो अपने टेमो टेम की है आंगो टीकाकरण कराना चाहिए और बाड़े के अंदर इसी कोई बीमारी फैलन नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात जको पोषण है इन पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए और सारों ज़्यादा खर्चों भी इन पर भी लागे संतुलित दाणो है चारों है या सप्लीमेंट है कोई फूड सप्लीमेंट है वे जरूर देना चाहिए। एक बकरी ने रोजाना बिंग जो शरीर बाहर है बिंग हिसाब से 3.5 सैकड़ा मात्रा में सूखो चारो चाहिए। इन सारू आप जहाँ खेजड़ी की सांगरी है लूंग है बेरड़ी को जियाँ पालो है और जियाँ किंकर की जकी पत्तियाँ हैं पातड़ी है एक काम में लेस का दूध देने वाले जकी बकरियाँ हैं या जकी प्यार नाली है और जकी तेजी से बढ़न लाग रही है बच्चा आ खातर आपने न्यारो न्यारो संतुलित आहार देना चाहिए। 40 किलोग्राम वजन वाली जकी गर्भवती बकरी है बिना 250-300 ग्राम दाणो देना चाहिए और जकी दुधारू बकरी है बिना 250 ग्राम दाणो जीवन निर्वाह सारू राशन के रूप में एर 1 लीटर दूध गलारे 400 ग्राम दाणो मिंगी उत्पादकता बढ़ाने सारू देना बहुत जरूरी है। बकरियां गए पीने खातर प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध होना चाहिए। लवण धातु जका है ये नियमित रूप देना चाहिए एर बकरी के बाड़े मापन की जकी ईंट आवे इंगी खनिज लवण की मिनरल

मिनरल ब्रिक्स, इन्हें अपन ने रखनी चाहिए ताकि बाद जरूरत पड़े यदि बिना चाट के आपकी आवश्यकता पूरी कर लिए। और अच्छी बकरी की जो कि नस्ल है बिंगो पालन करना चाहिए ताकि अपना उत्पादन देश के अर्ज को अपना बकरो हुए 20-25 बकरियां पर एक बकरो रखना चाहिए और अच्छी किस्म को वो हुए तो अपने ज़्यादा वो उत्पादन देश के और अपने जो व्यवसाय है इन्हें दिन दुगनो रात चौगनो बदास के। तो ग्रामीण श्रोताओं बात आप और भी करांगा थे मारा सागे बनिया रही हो तुना प्यारो सो लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं सुनियो प्यारो सो लोक गीत और अब बात करा चौपाल के अंदर वृक्षारोपण के बारे में भी वृक्षारोपण को के महत्व है के लाभ है। देखो श्रोताओं आपने पर्यावरण सारू रूख जका है बहुत ही जरूरी है। रूख यानी वृक्ष जका आपने पर्यावरण ने स्वस्थ रखे आपने ऑक्सीजन दे एर जकी खराब जलवायु है कार्बन डाइऑक्साइड में को शोषण करे और बदले में अपने प्राण वायु देवे। तो अपने खातर पौधा लगाना बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण और मानव जीवन सारू इंग और कोई विकल्प को नहीं तो अपन ज़्यादा में ज़्यादा के वृक्षारोपण करना चाहिए। आज के टाइम में वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि चारों मेरा अपन देखा के धुआं ही धुआं है कारखाना शूँ और जका यातायात का साधन है बाँसूँ बहुत ही धुआं फैलन लाग रही है और अपनी जकी धरती को तापमान है जो वो बदलन लाग रही है क्योंकि जो धुआं है ऊपर जागे किए जम जे और अपनी जकी धरती है बिंगी ताप है जको बिन गर्मी है बिन बाहर को निकल दे। तो इन सारू अपन किए इन समस्या से जे बाहर निकलना है तो अपन ज़्यादा ज़्यादा रूख लगाना चाहिए। रूंग को महत्व आप भी समझ सकें कि वो ऑक्सीजन को भंडार है और आपने जीवन सारू अपना जीवता रेवं इन सारू की आपने ऑक्सीजन की बहुत ही जरूरी है। और एक जो मोटो मान लो रूंख है दरखत है वो दिन में इतनी ऑक्सीजन दे कि चार लोग सांस ले सके। सागे सागे वो किया आपने जो कि ग्लोबल वार्मिंग होने लाग रही है जो कि पूरी पृथ्वी को तापमान बढ़न लाग रही है संसार की तापमान बढ़न लाग रही है बीशों बचाव है क्योंकि पेड़ जका की है हानिकारक जकी कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 इन्हें सोस लिया है धरती के जो बढ़तो तापमान है इनमें कम करने में मदद करे। सागे सागे की है वायु प्रदूषण ने भी वो प्रदूषण है बिना नियंत्रण करे पेड़ हवा में मौजूद क्या धूल का कण है धुआं है जहरीली गैसा है अन छाण गए पर्यावरण जो अपनों इन्हें की है शुद्ध करे स्वच्छ करे ताकि आप आराम से सांस ले सका। सागे सागे की है वो अपना जो बरसात हुए मेह बरसे इंगे में बहुत ही सहायक हुए। दरखत की है जब वाष्प छोड़े वाष्प सर्जन करे तो बीशू की है बादल आकर्षित हुए और अच्छी बरसात हुए और सूखो कौन पड़े। तो इन सारू भी अपने रूख लगाना बहुत जरूरी है। सागे सागे की है कि अपनी प्रकृति है अपनी जकी मट्टी है इनको संरक्षण करे क्योंकि जकी पेड़ की जड़ा की है माटी ने पकड़ के रखे तो मिट्टी के कटाव ने रुके और सागे सागे जद मान लो कभी आंधी आ जाए तेज हवा आ जाए तो जो कि उपजाऊ माटी है इनके उड़न शुरू रुके तो वो भी बहुत आपने फायदा है। सागे जो कि जमीन को जल स्तर है वो की है बढ़े क्योंकि पेड़ों की वजह से की है बारिश को जो पानी है जमीन के अंदर आसानी से रिस के उड़ जाए जिसों वो जल को स्तर बढ़े। सागे जका वन्य जीवी है अपना देखो इन धरती पर आदमी एक लोग होनी है इन धरती पर और भी पखेरु है जंगली जीव है जका गिया जकी धरती माता है तो बंगो भी रेण गो हक है तो बांसारू भी जंगल है जका पेड़ है एक ये अनगिनत जका पशु पक्षी है कीट पतंगा है अंगो प्राकृतिक घर है। बताओ जे आप सारा जंगल नाश कर देंगा सारे दरखता ने काट देंगा तो एक जी इकट्ठे जाएगा। तो अंग प्रति भी सोचना आपको बहुत ही जरूरी है।

तो आशारोपी वृक्षारोपण अपन ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जगह पंखेरू है, जीव जंतु है, आराम से रह सके और अपने पर्यावरण का सागे किए तालमेल बना सके, अपने जीवन ने सुधार सके। सागे सागे किए मानव जीवन और आर्थिक लाभ स्वरूप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दरखत आंशु अपन किए लकड़ी प्राप्त हुए, भोजन प्राप्त हुए, दवाइयाँ भी मिले। जी हाँ, पेड़ छू अपन किए आम है और है दूसरी चीज़ें मिले, तो तुलसी गिलोय मिले, ईंधन सारू अपन किया लकड़ी भी मिले, और सागे मानसिक जगह शांति है वह भी अपन मिले। बातें और भी करांगा, बिना सुनाओ गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं सुनियो और प्यारों सो लोकगीत। श्रोताओं बात करां खेतीबाड़ी की, तो आपने खेतीबाड़ी सारू की है माटी और पानी की जरूरत पड़े। तो आपने जकी माटी है और जो आपनों पानी है इनको आपने पीएच मान जको है वो जांचनो बहुत ही जरूरी हुए और वो जांचनो बहुत ही आसान है। ईशो आपने पतो चाल जाए कि आपनी माटी या पानी अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। घर पर या खेत में भी आप इनकी जांच कर सका। तो इन तरीके की बात करा जियाँ तो पानी को जियाँ पीएच मान आप जांचा ये सारू की है बाजार के अंदर जबकि पीएच मान जांचने वाली स्ट्रिप आवे छोटा छोटा कागज़ आवे जाने लिटमस पेपर बोले या डिजिटल पीएच मीटर को भी आप उपयोग करके इन्हें जान सका। तो इनको तरीको जियाँ बतावा थाने तो जियाँ लिटमस पेपर है इस आप जांचा तो एक साफ कांच के गिलास में प्लास्टिक के गिलास में पानी को सैंपल अपन ले लिया एर बाजार या मेडिकल स्टोर पर या जका और भी जका स्टोर है बठूँ अपन पीएच जांच वाली स्ट्रिप मिल जाए और इन स्ट्रिप ना आप के 2-3 सेंकट तई पानी में डुबो के रखा और बिना बाहर निकाला एर 10-15 सेकेंड तई इंतजार करा। और जे आपने मान लो स्ट्रिप है इनको रंग बदल जाएगो स्ट्रिप का सगे आपन के एक रंगीन चार्ट मिले अरबी पर रंगो मिलान आपन करना पड़े। चार्ट पर जिका नंबर लागेड़ा है 1-14 तई बा रंग सामने आपन जब बिन ले जाके देखा अरबी को मिलान करा और जके नंबर सगे वो पूरी त्रियां छेत्रियां मिल जाए दोनों रंग एक सा है तो आपने ठा लाग जाएगा कहीं को पानी को मान कितो है। दूसरो जो को तरीको है वो मीटर के द्वारा है जो डिजिटल मीटर आवे इन डिजिटल मीटर ने आपां पहला किए चालू कर लिया ऑन कर लिया रिंग आगे हिस्से ने किए पानी में डुबोवा पूरे मीटर ने पानी में नहीं डुबोगे सिर्फ आगे को जो सुई सी लागेड़ी हुए बिन्ने पानी में डुबोनो चाहिए एर मीटर की जो स्क्रीन हुए किसान भाइयों इन पर रीडिंग आने लग जाए जी हाँ 7.2 6.5 इन हिसाब से उनकी रीडिंग आवे एर बिन आप देख लिया। इन त्रिया इंच की अपनी माटी है इनको भी आपने पीएच मान जानना बहुत ही जरूरी है। माटी ठोस हुए तो इन

श्रोताओं, ओ आजगो चौपाल कार्यक्रम, थारी प्रतिक्रिया, थारा संदेशा जरूर भेजियो और चालते चालते ईश्वर शिवाई प्रार्थना करांगा कि मारा जका सगला श्रोता है बंगो लाणो बाणवा चित्रियां बसतो रहे, सब राजी खुशी रहे और ईश्वर सब ने किए दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे। तो आई शब्दांग सागे थारे सुनील भाई ने दियो आज्ञा, राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए फिल्म संगीत सुनिए।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अनजाना फ़िल्म का गीत सुना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए मोहम्मद रफ़ी को ही सुने फिल्म उपहार में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए कार्यक्रम के आखिर में सुने यशोदास और हेमलता को चित चोर फिल्म में, गीत रचना और संगीत रविंद्र जैन का।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए फिल्मी गीतों का ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनिए। आज जो फिल्म हम आपके लिए लेकर के आए हैं उसका एक उद्देश्य ये कि ये फिल्म जिस अभिनेत्री से अभिनीत है उनका आज जन्मदिवस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिंपल कपाड़िया की, जिनका आज जन्मदिवस है। आपका जन्म 8 जून 1957 को हुआ और आपने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत राज कपूर के साथ 1973 की फिल्म बॉबी से की। इसी फिल्म में राज कपूर साहब ने अपने बेटे ऋषि कपूर को भी पहली भूमिका के रूप में उतारा। डिंपल कपाड़िया को इस फिल्म में एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में पहचान मिली। तो आइए उनकी पहली फिल्म से ही हम उन्हें याद करें।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

साथियों, अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह को सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म थी हमारी आज की बॉबी, क्योंकि आज इस फिल्म की अभिनेत्री डिंपल कबाड़िया का जन्मदिवस है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राज कपूर साहब ने 16 साल की उम्र में इन्हें फिल्मों में ब्रेक दिया। उन्होंने अपनी रोमानी फिल्म बॉबी, जो 1973 में आई, उसके अंदर इन्होंने शीर्षक भूमिका निभाई और इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद इन्होंने विवाह कर लिया और फिल्म जगत से दूरी बना ली और फिर एक बार पुनः ये 1984 में फिल्म जगत में लौट आई और उस दौर की एक फिल्म सागर, जो 1985 में आई, उसमें इन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और इस फिल्म के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। लेकिन आज हमारी फिल्म बॉबी है, तो आइए इसी फिल्म का एक और गीत आपको सुनवाएं।

आनंद बख्शी के बोल के साथ, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म हमारी आज की बॉबी। डिंपल कबाड़िया को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के साथ साथ 1995 में आई फिल्म क्रांतिवीर के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा रुदाली फिल्म के लिए भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। 1993 में इसी फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। बहरहाल आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म बॉबी का एक और गीत।

डिंपल कबाड़िया की प्रमुख फिल्मों में सागर, क्रांतिवीर, नरसिम्हा, प्रहार, रामलखन, रुदाली, दिल चाहता है और बॉबी जैसी अनेक फिल्में रहीं, और इन्हीं फिल्मों में से हमने आज आप सबके लिए बॉबी फिल्म का चयन किया। बॉबी फिल्म जो 1973 में आई, एक बेहतरीन फिल्म रही। कहा जाता है कि इस वर्ष की ये एक सुपरहिट फिल्म थी जिसने ऋषि कपूर और डिंपल कबाड़िया को एक नई पहचान दी। इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों में ऋषि कपूर, डिंपल कबाड़िया, प्रेमनाथ, प्राण, दुर्गा खोटे, अरुणा ईरानी, प्रेम चोपड़ा और फरीदा जलाद थे। बहरहाल आइए इसी फिल्म का एक और गीत हम आपको सुनवाएं।

अभी आपने जो गीत सुना उस गीत को गाया था मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों ने। फिल्म थी हमारी आज की पॉपी, और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुने इसी फिल्म का एक और गीत।

शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: और अब टेनिस के कोर्ट के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ, जहां भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में एक पारी और 300 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड नई चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में भारत ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मोर्चों में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेहमान टीम को मैच के तीसरे ही दिन चित्त कर दिया। आइए सुनते हैं इस मैच पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
1: The super performance by the Indian squad. You got a feel for Afghanistan. They don't get to play a lot of test matches. Job done. Clinical, professional from India. We are very happy, camp, winning this one-off test match against Afghanistan.
2: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय युवा टीम ने सफेद जर्सी में भी अपने शानदार लय को बरकरार रखा और अफगानिस्तान पर एक पारी और 300 रन की विशाल जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन का विशाल स्कोर बनाकर घोषित कर दी थी। भारत के लिए इस पारी के हीरो कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल रहे। गिल ने 126 और राहुल ने 100 रन की शतकीय पारी खेली। इन शतक वीरों के अलावा साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने 81-81 रन का योगदान दिया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। 564 रन की विशाल चुनौती के सामने मेहमान टीम शुरुआत से ही सरेंडर करती नजर आई और भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी बल्लेबाज को लंबे समय तक क्रीज पर जमने नहीं दिया। अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई। टीम के लिए रहमत शाह ने सर्वाधिक 60 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेल रहे मानव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लेकर उनका बखूबी साथ दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन खेलने के लिए आमंत्रित किया, जहां अपनी दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान की बल्लेबाजी भारतीय घातक गेंदबाजों के सामने नाकाम साबित हुई और पूरी टीम 112 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और मानव के हाथों 1-1 सफलता लगी। अपने पहले ही मुकाबले में अपनी घातक गेंदबाजी से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पस्त करने वाले मानव सुथर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और भारतीय टीम इसके बाद अफगानिस्तान के साथ 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलेगी, जो कि 13 जून से शुरू होगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए विशेष शुक्ला।
0: तो अब न्यू चंडीगढ़ का किला फतह करने के बाद सफ़ेद जर्सी के बाद टीम नीली जर्सी पहन करके धर्मशाला में मिलेगी, जहां खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद होगी। और अब क्रिकेट के बाद बात करते हैं उलान बटोर की, जहां पर भारतीय पहलवानों ने अपना भरपूर दमखम दिखाया है। भारत ने उलान बटोर ओपन सीनियर रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता में अपने अभियान का शानदार अंत किया। भारत ने फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती में कुल मिलाकर 17 पदक जीते और तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया।
3: प्रतियोगिता के अंतिम दिन दीपक ने 61, सागर जगला ने 74 और दिनेश ने 125 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। कल इन तीनों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत पुरुष फ्रीस्टाइल में 7 पदक

0: हासिल करने में सफल रहा। दीपक ने कजाकिस्तान के आसिल एताकिन को एक तरफा मुकाबले में 6-0 से हराकर 61 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दिनेश ने 125 किलोग्राम के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगो कासिमबेक को 2-0 से हराया। सागर ने रूस के तामी एशिनी माएव को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के लिए फ्रीस्टाइल वर्ग में सुमित कुमार, मोहित, जयदीप और विक्की ने 4 कांस्य पदक भी जीते, जिससे भारत टीम चैंपियनशिप में रूस के बाद उप विजेता रहा। इससे पहले भारत के ग्रीको रोमन पहलवानों में सुनील और नितेश ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि साहिल ने 60 किलो वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। भारत की ग्रीको रोमन टीम ने 119 अंक के साथ ओवरऑल टीम खिताब जीता। महिला पहलवानों ने 7 पदक जीते, जिसमें मनीषा, नेहा और काजल ने स्वर्ण पदक जीते। नीलम, हंसिका लांबा, मानसी और प्रिया ने कांस्य पदक जीते। स्पोर्ट्स कैन के साथ अमीशा।
1: और अब कार्यक्रम में बात करते हैं विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की, जिसका आज गुजरात के अहमदाबाद में समापन हो गया। पूरी प्रतियोगिता में मेज़बान भारत का दबदबा साफ देखने को मिला, जहां भारत ने कुल 114 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मेजबान भारत ने सोमवार को अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 पदकों का आंकड़ा छू लिया और अपने दबदबे को पूरी तरह स्थापित किया। भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में वर्चस्व बनाए रखा और स्वर्ण पदकों की झड़ी लगाते हुए कुल 114 पदकों के साथ प्रतियोगिता का समापन यादगार अंदाज में किया। इसमें 102 स्वर्ण पदक शामिल है। विश्व योगासन चैंपियनशिप में कुल 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 31 देशों के खिलाड़ियों ने कम से कम एक पदक जीता। इनमें से 10 देशों ने कम से कम एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाले अहमदाबाद शहर में आयोजित इस प्रतियोगिता ने योगासन के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थापित किया। मयूर सोलंकी, स्पोर्ट्स कैन, अहमदाबाद।
1: तो अब योगासन भी एक खेल की तरह बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में एंट्री पाने के लिए एकदम बेताब है और देखना होगा कि 2030 तक ये खेल विश्व में किन शिखरों को छूता हुआ नजर आएगा। और अब बात करते हैं तीरंदाजी की। तीरंदाजी विश्व कप का तीसरा चरण कल से तुर्की के अंताल्या में शुरू होने जा रहा है। इस चरण में भारत के उन सभी 12 तीरंदाजों पर खास नजरें रहेंगी जो 2026 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
3: भारत ने अंताल्या आर्चरी वर्ल्ड कप के लिए 16 सदस्यों की टीम भेजी है। ये एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की तैयारियों के लिहाज से एक अहम पैमाना साबित होगा, क्योंकि आईची नागोया 2026 के लिए चुने गए सभी तीरंदाजों को तुर्की मीट के लिए भी टीम में शामिल किया गया है। पुरुष रिकर्व टीम में एशियन गेम्स के लिए चुने गए धीरज बोम्मा देवरा, यशदीप संजय भोगे और नीरज चौहान शामिल हैं। अनुभवी ओलंपियन अतनु दास टीम के चौथे सदस्य हैं। ओलंपियन दीपिका कुमारी भी महिला रिकर्व टीम का हिस्सा हैं और एशियन गेम्स टीम में जगह न बना पाने के बाद उनका मकसद भी अतनु जैसा ही होगा। वहीं कुमकुम मोहोद, कीर्ति शर्मा और अंकिता भगत जापान में होने वाले कॉन्टिनेंटल मीट से पहले टॉप खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने के लिए उत्सुक होंगी। होंगजो 2023 की मेडल विजेता ज्योति सुरेखा महिला कंपाउंड टीम की अगुवाई कर रही हैं। उनके साथ 2026 एशियन गेम्स की उनकी साथी खिलाड़ी चिकिता तनिपार्थी और पृथिका प्रदीप भी हैं। परनीत कौर टीम की चौथी सदस्य हैं। पुरुष कंपाउंड टीम में आईची नागोया 2026 के लिए चुने गए गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, साहिल जाधव और कुशल दलाल के साथ ऋषभ यादव शामिल हैं। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक तरफ तीरंदाजी की ये बड़ी प्रतियोगिता शुरू होने को तैयार है, जहां असली तैयारी होगी एशियन कप में अपनी तैयारियों को आंकने की। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में मंच सज रहा है बैडमिंटन ओपन का और पीवी सिंधु जहां भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी और कल से ये प्रतियोगिता 14 जून तक खेली जानी है। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को युवा और उभरती हुई खिलाड़ी मालविका बंसोड़ और अनमोल खरब, तन्वी शर्मा और ईशा रानी बरुआ, आकर्षी कश्यप तथा तन्या हेमनाथ का साथ मिलेगा जो भारत की चुनौती रखेंगी, जबकि इमाद फारूखी सामिया क्वालिफायर के जरिए मेन ड्रॉ में राह तलाशने की कोशिश करेंगी, जबकि पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी, एचएस प्रणॉय, किरण जॉर्ज से भारत को खासी उम्मीदें रहने वाली हैं, क्योंकि खिलाड़ी लगातार फॉर्म में हैं और प्रतियोगिता दर प्रतियोगिता अपने प्रदर्शन को निखारते हुए नजर आ रहे हैं। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की जोड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएगी। 12 जून से महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। भारतीय टीम एक बार पहली बार

0: ये किताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। और आज हम बात करेंगे इसी कड़ी में विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की।
1: पंजाब के मोगा से निकलकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व कप जिताने तक का उनका सफर प्रेरणादायक रहा है।
2: I'm absolutely very proud. I don't have words how to express myself, but feeling great. This time we have passed that line which we have been, you know, working hard for so many years.
1: वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली हरमनप्रीत आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिनी जाती है। हरमनप्रीत के नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। वे महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम 8000 से ज्यादा रन और 70 से अधिक विकेट दर्ज हैं। लेकिन उनका सबसे यादगार प्रदर्शन 2017 महिला एक दिवसीय विश्व कप के सेमीफाइनल में रहा। ऑस्ट्रेलिया के साथ नाबाद 171 रन की पारी ने उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर दिया। ये आज भी महिला विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। साल 2018 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन बनाकर महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी उन्होंने इतिहास रचा। वे विदेशी T20 लीग में अनुबंध पाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में उनके शानदार प्रदर्शन ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए नए रास्ते खोले। उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने 2017 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और बाद में पद्मश्री से अलंकृत किया। अब नजरें इस वर्ष महिला T20 विश्व कप पर हैं। अनुभव, नेतृत्व और बड़े मैचों में प्रदर्शन की क्षमता हरमनप्रीत को भारतीय टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि उनकी कप्तानी में टीम एक और विश्व खिताब जीतकर इतिहास रचेगी। कई रिकॉर्ड, कई उपलब्धियां और भारतीय महिला क्रिकेट को नई पहचान देने वाली हरमनप्रीत कौर अब एक और विश्व कप चुनौती के लिए तैयार हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो तैयार हैं हरमनप्रीत कौर और तैयार है उनकी विमेंस एंड ब्लू आर्मी, जिसने आज वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले ही प्रैक्टिस मैच में वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। तो कह सकते हैं कि एक शुभ आगाज हो चुका है इसका। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप इस पर अपनी राय और अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
4: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू

0: कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए चार गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक

0: शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार

0: शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाश।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये गज़लें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, कार्यक्रम सुगम संगीत में, जिसमें आप सुन रहे हैं चंदन दास की गाई गज़लें।

इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फ़ोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-04-81-23-71-7117 या 2371-7106 और 2331-44-44। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289-04-44। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी।

0: में उस समय भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफ़ी आगे था, केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की धन के उसकी सब्जी की फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
1: जी।
0: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुँचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पर उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज़ करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जाँच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित किया जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूँगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सब को साथ लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो।
1: जी आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम जी। प्रणाम
1: जी।
0: नमस्कार। नमस्कार जी।
2: सर जी मेरा कुछ जिज्ञासाएं उत्सुकताएं हैं उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान गेहूँ मक्का ज्वार बाजरा दलहन तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रवि खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: ब्रह्मज्योति जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज़्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि ज़मीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं और आजकल मोटे अनाजों की भी काफ़ी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफ़ी संभावना है और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ ज़मीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पर भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे पानी अगर कहीं ज़्यादा तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार में उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो वो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?

0: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर किसान भाई एक या दो या ज़्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए, लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे, तो वहाँ पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है,
1: कमी हो जाती
0: और
1: है
0: उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: जी डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश
1: जी,
2: राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
2: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
1: डॉक्टर मीना,
0: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया, वो क्या है ना, ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं, और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है, और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना, कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है, मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है, और इसकी कमी कमी बहुत ज़्यादा है, और किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा,
1: तो इसकी सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी,
0: बहुत जरूरी
1: है, जो किसान कराते रहें। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
3: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
3: जी, हम योगेश झांगड़े बोल रहे हैं, अभी मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी,
3: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकते हैं उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
4: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं, और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है, और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपने खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है, और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें, तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो।
5: हेलो
1: जी अनिल जी।
5: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष

0: किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
1: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूँगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है। इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में, तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी, और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हों और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादक संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
2: हम उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार जी।
3: सर मैं ये जानना चाहता हूँ हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
2: जी डॉक्टर मीना।
4: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा जो, क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहाँ से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी सीजनल फसलें जो एक सीजन में ख़त्म होती हैं उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
2: जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है तो उसका लाभ ज़रूर लें। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए?
4: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं उनका

0: पियो करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है, और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन,
1: जी
0: तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है। यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है, मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष या हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएँ और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएँ।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में? डॉक्टर नवाज,
2: जैसा
1: आपसे।
2: कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफ़ी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए।
1: जी
2: उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें

0: फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफ़ी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पे इसका उपयोग करना चाहिए और अगर हम वो उपयोग नहीं कर पाते हैं हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाएं साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारे गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से मैं गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जो कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीज़ों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो विक्स डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद हैं जो उनके माध्यम से दे सकते हैं या कुछ जैविक ऐसी भी चीज़ें हैं जो फफूंद नाशक जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाएं। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
2: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक समट एक गेहूँ में बीमार वो आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगी, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है, बीज उपचार के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको प्योद को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज़्यादा लाभ देती हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
3: प्रश्न ये है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
4: जैसे इंद्रमान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है,

0: अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भाग है तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनके अवेलेबलता मतलब वो वैसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी है किसान की जागरूकता। जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है। और जैसे छत्तीसगढ़ में है या MP में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुंच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिस पे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
2: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहाँ से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पर जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989। तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपको यहाँ का STD कोड लगाएंगे 0112584 1670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे से एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकल इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पर डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी, हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
3: प्रियंका जी आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी
1: जी,
3: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछें।
3: जी जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
0: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकार हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या ना जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जाँच करा लें, क्योंकि जाँच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई या अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो pH डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी क्योंकि उर्वरक और जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज़ हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही हम फसल से ज़्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है और हमें

0: ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी। और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके माध्यम से मिलकर उनको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं, उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की ज़रूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर डबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।
0: नमस्कार।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजकर, क्षमा करें, रात्रि के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे फुटबॉल खिलाड़ी शाहिद हुसैन मंसूरी से बातचीत। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का अंशदान है।
1: नमस्कार साथियों, आज के मेहमान हैं शाहिद हुसैन मंसूरी। आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। शाहिद भाई, कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू सर।
1: शाहिद भाई, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि फुटबॉल आपके लिए क्या है?
2: सर, पहले जब खेलता था, जब फुटबॉल पेशन था, जुनून था, और अब फुटबॉल ब्लड में घुल मिल सा गया। मतलब अब जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक फुटबॉल के लिए रहेंगे। ऐसा है कि मतलब चित्तौड़ से कोई ऐसा लड़का, ऐसा खिलाड़ी जाए, ताकि चित्तौड़गढ़ का नाम शायद मैं उतना रोशन नहीं कर पाया हूँ, उससे ज्यादा अच्छा रोशन वो कर दे। और मेरी लगातार कोशिश यही है पिछले 8 से 10 सालों से, कोई एक प्लेयर या दो प्लेयर यहाँ से ऐसे जाए इंडिया टीम के लिए, ताकि जो मेरा सपना है वो पूरा हो जाए।
1: अच्छा शाहिद भाई, कौन कौन से टूर्नामेंट आपने खेले हैं, कौन कौन से मैच आपके सबसे बढ़िया रहे हैं?
2: सर, स्टार्टिंग नेशनल से बात करें तो मैं अंडर 19 नेशनल खेला था स्कूल से।
1: कौन से साल की बात है ये?
2: 2003 या 4 की बात होगी सर। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू खेलता रहा, फिर मेरा फर्स्ट संतोष ट्रॉफी आया 2009 में। तो मैंने 2009 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और कोयम्बटूर चेन्नई खेलने गया। फिर मैं 9, 10, 11, 12 कंटिन्यू 4 साल राजस्थान के लिए खेला, जिसमें मैं 2011 में राजस्थान का उप कप्तान भी रह के राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया मैंने। और इसी के साथ साथ उन्हीं कंटिन्यू 4 सालों में 3 साल में मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी की तरफ से वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेंट किया, उसमें भी एज ए कैप्टन में 1 साल रहा।
1: मेडल की बात करते हैं तो क्या क्या आपके हिस्से में आए?
2: सर, संतोष ट्रॉफी और यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडल की बात करते हैं, तो दोनों ही जगह मैं किसी भी प्रकार का मेडल नहीं आ पाया, क्योंकि हमारी पोजीशन नहीं लग पाई। अच्छा, थर्ड या फोर्थ पोजीशन लगती है तो भी हमें मेडल मिलता है, पर उस चारों साल में बिल्कुल मेडल का चांस नहीं बन पाया।
1: कमियां किस स्तर पर रह गई?
2: कमियां सर इस स्तर पर रही कि उस समय सिखाने के लिए कोच अवेलेबल नहीं रहता था, मोबाइल भी इतना नहीं था, हम सिर्फ हमारे सीनियर प्लेयर को देख के ही फुटबॉल खेलना सीखे। किसी ने बताया नहीं कि बॉल पे कैसे किक करना है, किस तरह बॉल पकड़नी है, किस तरह मारना, किसी ने नहीं बताया।
1: एक फुटबॉल खेल के लिए आवश्यकताएं क्या क्या रहती है?
2: सबसे पहले तो सर बच्चे का इंटरेस्ट, अगर बच्चा इंटरेस्टेड है। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है और अपन उसे सारी सुविधा देंगे तो भी वो खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, गॉड गिफ्ट है, रनिंग वगैरह है, तो उसके बाद अपने उसे प्रॉपर ग्राउंड, फुटबॉल का शूज, टी शर्ट, ड्रेस और फुटबॉल का इक्विपमेंट, जिससे अपन उसमें स्किल्स, रनिंग वगैरह ये बना सकते हैं, और एक प्रॉपर कोच

0: जिसने लाइसेंस ले रखा हो या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से लाइसेंस प्राप्त हो, वो ही उसे कोचिंग दे सकता है, तो ही वो फुटबॉल में निखार पाएगा।
1: शहीद भाई, खिलाड़ी का चयन किस तरह से होता है? आपने नेशनल खेला है और संतोष ट्रॉफी भी खेली है राज्य के लिए।
0: खिलाड़ी का चयन तीन तरीके से होता है सर। एक तो सर होता है उसकी स्किल्स, कि उसके पास जो दूसरे प्लेयर हैं उनसे थोड़ा सा एडवांस क्या है, रनिंग है, कटिंग है, शूटिंग वगैरह है। ये एक होता है सर स्टेमिना, जो फुटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब फुटबॉल में आपको 90 मिनट तक भागना ही है, तो देखा जाता है कि आप दूसरों से कितनी स्पीड से तेज भाग रहे हो, कितनों को ओवरटेक कर रहे हो। और तीसरा होता है सर इंडोरेंस, मतलब आपने फुटबॉल की प्रैक्टिस सुबह से शाम तक 2 घंटे की, 4 घंटे की, क्योंकि बॉल आपके पैरों में रहेगी तो ही कोच की आपके नजर पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं। अगर ये चीज आप में है तो ही आपका सिलेक्शन ऊपर लेवल पे होगा, बाकी नहीं होगा।
1: संतोष ट्रॉफी का अनुभव कैसा रहा? टीम के साथ में किस तरह से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता रहती है?
0: तो संतोष ट्रॉफी में अनुभव ये रहा है कि हमारे पूरे भारत के जितने भी प्लेयर हैं, एक तो सभी से मुलाकात हो जाती है वहां, क्योंकि सारे प्लेयर आते हैं वहां। एक से राजस्थान टीम की बात करें तो राजस्थान का उस जमाने में भी बहुत अच्छा नाम रहा है। हम साउथ में खेले, वेस्ट में खेले, तो वहां पे भी राजस्थान का बहुत अच्छा नाम रहा। तो एक हम जब जाते हैं वहां तो बोलते हैं कि भाई राजस्थान से, तो एक वो एनर्जेटिक पल आ जाता है। फिर अगर टीम उसी तरह का रिजल्ट कर देती है, कॉम्बिनेशन देती है, अगर टीम में परिवार जैसा माहौल रहता है तो थोड़ा ज्यादा मजा आ जाता है। और रही बात कोच की, और जो हमारी टीम का जो आपस में कॉम्बिनेशन है, वो एक परिवार की तरह ही रहा सर। चारों साल कोई मतभेद वगैरह नहीं हुए।
1: ट्रॉफी खेली जाती है, टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन कुछ मैच हमें याद रह जाते हैं।
0: बिल्कुल सर, मेरे लिए ऐसे ही मैच है 2010 का वेस्ट बंगाल का। मुझे आज भी याद है कि हमारा फर्स्ट मैच हमारे मणिपुर से था, हम हार गए थे 9-0 से। तो जब हम वापस हमारे चेंजिंग रूम में आए थे, तो हमारा नेक्स्ट मैच था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से। तो उस समय उनके कोच थे यूसुफ सिद्दीकी, तो उनका बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं था हमारे प्रति, कि हम 9-0 से हार गए। तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही मजाक में बोला था, क्या टीम है ये वो वगैरह। तो जेएंड के पुलिस में एक इंडिया प्लेयर था रोबिन सिंह करके, और मैं डिफेंड स्टॉपर खेलता था। मेरे कोच ने बोला मुझे कि अगर ये रोबिन सिंह को अगर तू कंटिन्यू मार करेगा तो अपन ने स्कोर नहीं खा पाएंगे और अपन गोल मार देंगे। तो मेरे कोच ने सिर्फ मुझे रोबिन सिंह के पीछे लगा दिया। तो मैच के फर्स्ट हाफ में 39 मिनट में एक ऐसे 50-50 बॉल आता है, और रोबिन सिंह बॉल लेके आगे बढ़ता है और मैं उस पर चार्ज करता हूँ, तो चार्ज पे उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तो रोबिन सिंह अपने कोच को हैंड ऊपर करके बोलता है मुझे चेंज ले लो, मैं नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन उसमें मुझे रेफरी ने रेड कार्ड दे दिया होता है। ग्राउंड रेफरी जब रेड कार्ड दे देता है तो आप ग्राउंड में बिल्कुल अलाउ नहीं होते हो, आप चेंजिंग रूम में चले जाते हो। तो मैं चेंजिंग रूम में चला गया था, तो चेंजिंग रूम में और ग्राउंड के बीच में एक पारदर्शिता खिड़की थी, तो वहां से बैठ के मैं पूरा मैच देख रहा था। और हम वो मुकाबला 1-0 से जीते, और मेरे कोच ने मुझे बधाई दी कि तेरी वजह से हम ये मुकाबला जीते हैं, अगर रोबिन होता तो शायद ये मुकाबला में हार जाते हो। उसी टीम के कोच ने पूरे राजस्थान टीम को आके चेंजिंग रूम में फुटबॉल के शूज गिफ्ट दिए और पूरी टीम का हौसला अफजाई किया।
1: शाहिद भाई, जिस समय मैच खेलना होता है, तैयारी की जाती है टीम के द्वारा, रणनीति किस तरह से मैच को आगे बढ़ाना है और मैच के दौरान रणनीति बदलनी पड़ती है, किस तरह से ये खिलाड़ी टीम कर पाती है?
0: सर जैसे हमारा मैच होता है 2 बजे, तो हम 10:30-11 बजे पूरी टीम एक रूम में बैठ जाते हैं। जो कोच हमारा होता है वो मैं डेस्क बोर्ड पे अपनी पोजीशन समझाता है 2 घंटे पहले, कि हम आज अटैकिंग खेलेंगे, आज हम रुक के खेलेंगे, या ओवरलैप खेलेंगे, या 1-2-1 खेलेंगे। जैसे सपोज हमारा मैच पंजाब से, तो हम पंजाब जैसे ही खेल खेलेंगे, क्योंकि पंजाब भी ओवरलैप खेलती हवा में, राजस्थान भी ओवरलैप खेलती। लेकिन अगर हमारा मैच मणिपुर से है तो मणिपुर ओवरलैप नहीं खेलती है, वो छोटा पास गेम खेलती है। तो हमारा कोच यही कहेगा, जब अगर वो आपका छोटा पास गेम खेलती है तो आपको उनका पासिंग डिस्टेंस वो तोड़ना है। तो 2 घंटे पहले तो हमारा वो डेस्क बोर्ड पर समझाते हैं। फिर जब हम आधे घंटे पहले चेंजिंग रूम में आते हैं, तो चेंजिंग रूम में आप हमारा जो कोच होता है एक अच्छे से जोश भरी स्पीच देके सभी खिलाड़ियों को मोटिवेट करता है कि आज हमें अपना पूरा दमखम लगाना है, और अगर ग्राउंड में किसी भी तरह का कुछ मतभेद होता है खिलाड़ियों के आपस में तो हमें उसे भूल के और टीम के लिए खेलना है। फिर भी अगर उसके बाद कुछ नहीं होता तो हाफ टाइम होता है, उनमें उसे 10 मिनट मिलते हैं। तो अगर जो हमारे फर्स्ट हाफ की स्ट्रेटजी है जो खराब हो जाती है, तो वो 10 मिनट में हम वापस सेकंड हाफ के लिए नई स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसी पे हम फॉलो करते हैं।
1: आप किस पोजीशन पर खेला करते थे?
0: मैं सर मेन स्टॉप

0: पर खेला करता था।
1: हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसकी भूमिका क्या रहती है।
0: इसकी भूमिका ये रहती है सर, जो गोल कीपर से जस्ट आगे का जो प्लेयर खेलता है अपनी टीम के लिए, वो स्टॉपर होता है, जिसे डिफेंडर भी कहते हैं। उसका ये काम है कि गोल कीपर के पास और गोल पोस्ट में बॉल नहीं जानी चाहिए, मतलब अगर अपने आखिरी सांस तक कोशिश यह करे कि वो गोल होने से रोके, यही उसकी मेन भूमिका रहती है। और यही गोल कीपर भी उस पर डिपेंड रहता है और आगे वाली टीम भी उसी पर डिपेंड रहती है,
1: टीम को गोल करने से रोकना।
0: हाँ, सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को गोल करने से रोकना, यही मेन स्टॉपर का काम है।
1: अच्छा, कई बार भूमिकाएं बदली जाती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ?
0: बिल्कुल हुआ सर, ऐसा होता है। हमारे 2012 में लास्ट मैच था असम में, गुवाहाटी में, मिजोरम के खिलाफ। तो वहां क्या कि हमारे जो प्लेयर थे आगे फॉरवर्ड में, वो क्या कि बॉल लेके शूटिंग नहीं कर पा रहे थे गोल पोस्ट पे। तो हम ऑलरेडी हार ही रहे थे 4-5-0 से। तो मेरे कोच ने कहा कि टीम पूरी प्रेशर में आ रही है, तो शाहिद को फॉरवर्ड में डाल दो और किसी भी एक प्लेयर को स्टॉपर में डाल दो, गोल तो हो ही गए थे ऑलरेडी। तो ऐसा करके मैंने 3 शॉट अटेम्प्ट किए, जिसमें से 2 गोल पोस्ट के लगे, गोल कीपर ने सेव किया, तो हमें कॉर्नर मिला, फिर भी हम गोल नहीं कर पाए। तो ये एक फायदा होता है कि जब अगर अपने फॉरवर्ड नहीं चल रहे हैं तो हमें स्टॉपर को मौका दिया जाता है आगे शूटिंग के लिए, ताकि वो लंबी डिस्टेंस से 20 मीटर 30 मीटर डी के बाहर से गोल पोस्ट में शूट ले सके।
1: मैच के दौरान तो एक दूसरे को बहुत ही शत्रु की तरह से देखा जाता है कि ये मेरी टीम पर गोल कर सकता है, मुझे इससे अपनी टीम का बचाव करना है, गोल पोस्ट को रोकना है। जब खिलाड़ी खेल के मैदान से बाहर होते हैं, प्रतिद्वंदी टीम की बात करते हैं, तो व्यवहार किस तरह का होता है?
0: जैसे मैच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, किसी के चोट नहीं लगती है, दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में झगड़ा वगैरह नहीं होता है। तो जब मैच खत्म होता है तो मैच के अंदर क्या हुआ वो सब चीज भूल के दोनों टीमों के कोच और दोनों टीमों के खिलाड़ी एज ए परिवार की तरह मिलते हैं। अगर मैच के अंदर कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया या कुछ ज्यादा माहौल गर्म हो गया, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है खिलाड़ी ना तो हैंडशेक करता है ना गले मिलता है, वो नाराज होकर चला जाता है। तो ये कम ही होता है, पर ज्यादातर मैच खत्म होने के बाद सब खिलाड़ी आपस में मिल लेते हैं और वो पल ऐसा होता है कि मैच को भूल के अच्छा रिश्ता डेवलप करते हैं।
1: अपनी कमजोरियों को खिलाड़ी और टीम किस तरह से पता लगाती है?
0: जैसे आज मुझे स्टॉपर पे खिलाया और मेरा काम है बॉल रोकना हेड से या पैर से या रनिंग करके, लेकिन आज मुझसे 2 हेड मिस हो गए, 1 हेड पे गोल हो गया, तो कोच मुझे पकड़ लेगा मेरे से हेड क्यों मिस हुआ, कोच उसी पे काम करता है और फिर मैं भी उसी पे काम करूंगा, क्या प्रॉब्लम रही जो मेरे हेड मिस हो गए।
1: कई बार एक खिलाड़ी की गलती से पूरी टीम हार जाती है, गोल हो जाते हैं, बाद में किस तरह की बातें आपस में की जाती है?
0: सर ऐसा भी एक किस्सा हुआ था 2009 में, फर्स्ट संतोष ट्रॉफी में हमारा मैच त्रिपुरा के खिलाफ था और हम दोनों टीमें बराबरी पे चल रहे थे, हमें एक पेनाल्टी मिली थी। एक्चुअल में क्या वो पेनाल्टी मिली तो हमारा एक दोस्त था जो खिलाड़ी था, बिना कोच के पूछे उसने पेनाल्टी ली और मारी और आउट चली गई, तो हम वो मैच ड्रा पे रह गए जबकि हम वो जीत जाते हैं क्योंकि हमें लास्ट टाइम मिला था। पर उस समय क्या होता है कि कोच बहुत हाइपर हो जाता है और वो गुस्सा पी लेता है क्योंकि पब्लिक वगैरह सब देख रही होती है, कुछ नहीं बोल पाता, पर जब हमारा चेंजिंग रूम आता है तब वो कहीं ना कहीं अपना जो टेम्परामेंट है वो नॉर्मली खो देता है या नहीं भी खोता है, मतलब वो मतलब उस प्लेयर को कड़ी फटकार लगाता है कि आपको रुकना चाहिए था, पूरी टीम से पूछना चाहिए था। तो ये हो जाता है क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है ना सर कि बॉडी पूरी गर्म रहती है तो दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है।
1: एक आदर्श खिलाड़ी कौन रहे हैं आपके, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मुझे इसकी तरह बनना है?
0: हमारे जो चित्तौड़ के पुराने कोच थे विजय सिंह जी काक्सा, जिन्होंने काफी अच्छा नाम कमाया था, और एक नईमुद्दीन शेख थे जो रतलाम DRM रेलवे स्टेशन मास्टर थे। तो मैं इन दोनों जैसा बनना चाहता था क्योंकि इनकी हाइट फिजिक्स भी अच्छी थी और इनका गेम भी अच्छा था और इन्होंने कोचिंग भी की मेरे को।
1: इस समय खेल के साथ में जुड़ाव किस तरह से आपका हो रहा है?
0: प्रोफेशनल फुटबॉल तो मैं 32 साल की ऐसे मैंने अलविदा कह दिया। मैं सुबह जाता हूँ ग्राउंड पर, प्रैक्टिस करता हूँ और खुद को फिट रखने के लिए भी खेलता हूँ और बच्चों को समय समय पर कोशिशें करता हूँ कि जो भी मेरे पास है उनको वो दूर तैयार करूँ और एक ऐसा फुटबॉल खिलाड़ी बनाऊँ ताकि पहले कोच नहीं हुआ करते थे, अभी हम अच्छे लेवल पे खेले तो उसे बता सकते हैं कि क्या क्या कमी है आप में और कैसे सुधार हो गया।
1: खिलाड़ी को खान पान का भी ध्यान रखना होता है?
0: बिल्कुल सर, फुटबॉलर ऑयली चीजें नहीं खा सकता ज्यादा, मतलब कोच अलाउ ही नहीं करेगा, ज्यादा बाजार का नहीं खाने देगा, फास्ट फूड नहीं खाने देता है, एक टाइम आपको दाल चावल लेना ही पड़ेगा, हल्का खाना, इन सब चीजों का कोच बहुत ध्यान रखता है, जूस वगैरह का, फ्रूट का इनका।
1: आज के दौर के युवाओं को कोई सलाह देनी हो क्या देना चाहेंगे?
0: आज के दौर के युवाओं के लिए सर एक सलाह है कि आप कोई भी गेम खेलें पर

0: एक गेम जरूर खेलें, क्योंकि आज सर देखते हैं अपन बीमारियां वगैरह इतनी बढ़ गई है कि अपन 24 घंटे में से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मेडिसिन ज्यादा खा रहे हैं, वो पैसा वहां लग रहा है, जिम में जा रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं। लेकिन अगर युवा अपने लिए और अपने शरीर के लिए सिर्फ 2 घंटा भी निकालें, कोई भी गेम खेलें, तो उससे लॉन्ग टाइम वो फिट रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा और उसका कुछ कन्वेंस है जो बचेगा।
1: शाहिद भाई, आज के युवा युवतियों को खेल के मैदान में क्यों आना चाहिए?
0: सर कंट्री को जरूरत है सबसे पहले, तो अगर युवा ग्राउंड में नहीं आएगा तो हम ओलंपिक में दूसरी जितनी भी ट्रॉफी है उनमें मेडल नहीं ला पाएंगे। अगर युवा ही ग्राउंड में नहीं आएगा सर, तो देश का नाम कब आगे बढ़ेगा, स्टेट का कब आगे बढ़ेगा? जब खेलने वाला ही कोई नहीं होगा तो स्टेडियम मैदान खाली रहेंगे।
1: खेल कैसे हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है?
0: खेल सर स्वास्थ्य को और दिमाग को दोनों को अच्छा रखता है। रीजन ये, अगर आप सुबह भी खेलते हैं शाम को खेलते हैं, सबसे पहले आपका जो भी गेम है, मैं फुटबॉल की नहीं कह रहा हूँ, कोई भी गेम खेला आप, एथलेटिक्स में हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कुछ भी खेले आप, तो आप खेलोगे, वार्म अप होगे, सबसे पहला तो आपका पसीना निकलेगा, आपके जो भी अंदर की वीकनेस है वो खत्म होगी, फिर खिलाड़ियों से आप मिलोगे, बातचीत करोगे, तो आपका मानसिक तनाव भी कम होगा, तो फिजिकल और मेंटली दोनों आपका स्ट्रोंग हो रहा है।
1: आज के दौर के युवाओं को, परिवार के लोगों को कोई सलाह देनी हो, खिलाड़ी होने के नाते क्या देना चाहेंगे?
0: तो सबसे पहले तो मैं फैमिली मेंबर्स को सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ग्राउंड की तरफ भेजें। एजुकेशन भी मस्ट है, मैं मानता हूं, 1 घंटा ग्राउंड के लिए भेजें, बाकी आप एजुकेशन के लिए और घर के लिए रखें। अगर आप बच्चे को ग्राउंड की तरफ भेजेंगे और आपकी तरफ से बच्चा फ्रीडम में रहेगा कि नहीं मम्मी पापा ने भेजा है, तो वो कोई ना कोई गेम में इंटरेस्ट ले ही लेगा, और वो किसी ना किसी गेम में इंटरेस्ट लेगा तो फिर वो खिलाड़ी बनेगा, तो फिर अपने स्टेट का और कंट्री का नाम रोशन करेगा, उसे ये मन में डर नहीं रहेगा कि मेरे पापा मम्मी कुछ बोलेंगे, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और जब जब बच्चे को थोड़ी सी भी आजादी मिलती है ना, तो वो चाहे जिस गेम में हो वो अपनी जी जान झोंक देता है उसमें।
1: शाहिद भाई, आपकी इन्हीं बातों को हम अंडरलाइन करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी फुटबॉल खिलाड़ी शाहिद हुसैन मंसूरी से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का अंशदान था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं पर्वतारोही निवेदिता कौर से की गई बातचीत।
3: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम खेल से जुड़ी हुई विभिन्न शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं निवेदिता कौर जी, और आप पर्वतारोही हैं, और आज हम इनसे जानेंगे पर्वतारोहण की चुनौतियों के विषय के बारे में। निवेदिता जी नमस्कार।
4: नमस्ते सर।
3: निवेदिता जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि पर्वतारोहण अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग स्पोर्ट है, तो किस प्रकार से आपका इस फील्ड में आना हुआ?
4: जी सर, 2019 में मुझे पर्वतारोहण के कुछ कोर्सेज के बारे में पता लगा
3: जी।
4: और सबसे पहले मैंने बेसिक कोर्स किया
3: जी।
4: जो कि मैंने मनाली से किया था
3: जी।
4: और उसके बाद मुझे लगा कि ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत हद तक सूट करती है
3: जी।
4: तो इसलिए फिर मैंने उसमें आगे एडवांस कोर्स किए और फिर उसके बाद में सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया। तो धीरे धीरे इस तरीके से मैंने कोर्सेज किए और आगे एक्सपीडिशंस भी इस फील्ड में किए
3: जी। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स है और इसमें मतलब जोखिम भी बहुत ज्यादा है।
4: हाँ जी।
3: आपसे यही जानना चाहेंगे कि इतना जोखिम का स्पोर्ट होने के बावजूद आप इस खेल की तरफ आगे बढ़ी हैं या इस फील्ड में आगे बढ़ी हैं, तो क्या आपके मन में विचार रहे उस समय?
4: सर, सबसे पहला विचार यही था कि ये मुझे चैलेंज कर रहा था, जो मेरा कंफर्ट जोन था मुझे उससे बाहर निकलना पड़ा, और बाहर निकलने के लिए मैंने मेहनत करी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जिसके कारण मैं इस खेल की तरफ आकर्षित हुई
3: जी। अच्छा, आपने बताया कि इसमें बहुत तरीके के कोर्सेज भी होते हैं।
4: हाँ जी।
3: तो ये है कि एक पर्वतारोहण में आपको कहीं चट्टानों पर भी चढ़ना होता है, कहीं
4: हाँ
3: आपको खुले इलाके में भी चलना होता है, जंगली जानवरों का भी खतरा होता है
4: जी।
3: और कई बार कुछ खाइयां होती है, तो इस तरह की जब समस्याएं आती हैं, तो इनमें क्या सभी फील्ड के अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं या किस प्रकार के कोर्सेज इसमें किए जाते हैं?
4: सर, जैसे इसमें मेन कोर्सेज दो तरीके के होते हैं। एक कुछ कोर्सेज हैं जो अपने भारत में एक इंस्टीट्यूट है माउंट आबू में
3: जी।
4: वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग से रिलेटेड केवल कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे आप केवल जो पत्थर के पहाड़ हैं आपको उन पे कैसे चढ़ना है, वहाँ पे जा रहे हैं उस एरिया में तो कैसे कैंपिंग करनी है, उसके बारे में सिखाया जाता है। और बाकी इंस्टीट्यूट्स में बेसिक माउंटेनियरिंग के कोर्सेज होते हैं। माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण में, जो कि रॉक क्लाइंबिंग है, वो माउंटेनियरिंग का एक भाग है
3: जी।
4: जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, कहीं बर्फ वाले पहाड़ों में जाएंगे, तो वहां पे आपको पत्थर के पहाड़ भी चढ़ने पड़ेंगे और बर्फीले इलाकों में भी जाना होगा
3: जी, जी, जी।
4: तो इस तरीके से ये दो तरीके के मेन कोर्सेज होते हैं अपने यहाँ पे।

0: तो आपने क्या दोनों ही तरह के कोर्सेज किए हैं?
1: हाँ जी सर, मैंने दोनों ही तरीके के कोर्सेज किए हैं।
0: तो यहाँ अब एक्सपीडिशंस की बात करते हैं, तो आपने रॉक क्लाइंबिंग में या फिर माउंटेनियरिंग में ऐसी कौन सी दुर्गम स्थान है जो आपने एक्सप्लोर किए हैं?
1: सर जैसे हम एक्सपीडिशंस में जाते हैं तो जो सबसे अभी तक का सबसे जो ऊंची चोटी मेरी रही है वो 6,250 मीटर की मैंने क्लाइंब करी है लेह लद्दाख में।
0: जी
1: तो वो भी एक काफ़ी दुर्गम इलाका है ले, अगर हम यहाँ के कंपैरिजन में देखें, अगर जयपुर और ले की बात करें तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा दुर्गम हो जाता है, और फिर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो उस इलाके में दुर्गम होने लग जाता है, वो
0: जी जी
1: उनकी एक्सेस मेन इलाकों से कटती जाती है।
0: जी दूसरा ये भी देखा गया है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की भी कमी आने लगती
1: हाँ
0: है
1: जी
0: बॉडी में भी,
1: जी
0: तो क्या इसके लिए कोई विशेष प्रकार से अपने आप को तैयार करना पड़ता है, या अपनी बॉडी को उस माहौल में ढालने के लिए किस तरीके के एक्सरसाइजेस करते हैं आप लोग?
1: सर सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें रहता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस,
0: जी
1: जो भी प्राणायाम है अगर वो हम करते हैं तो हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और उससे हमारे को ऐसे इलाकों में एडजस्ट होने में हेल्प मिलती है। और दूसरा एक मेन होता है कि जब भी हम हाइट गेन कर रहे हैं तो उस हाइट गेन को हम एकदम से ना करें। अगर मान लीजिए आप अभी 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं तो एकदम से अगर आप 4000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे, आपने 2000 मीटर गेन कर लिए, तो एकदम से आपकी बॉडी उस एल्टीट्यूड में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो हमें धीरे धीरे जो ऊंचाई होती है तो उसको गेन करना होता है। जैसे जनरली माना जाता है कि 1000 फीट हम एक दिन में गेन करेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेंगे तो आपकी बॉडी एडजस्ट होती जाएगी और एकदम से ऐसे कोई सिम्टम नहीं आएंगे और आप बीमार नहीं होंगे।
0: जी अच्छा, यहाँ पर आपने बताया कि इसमें रेस्क्यू भी रेस्क्यू का भी आपने
1: हाँ जी
0: ट्रेनिंग लिया
1: जी
0: है, तो रेस्क्यू करना और एक क्लाइंबिंग करना दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी को रेस्क्यू कर रहे होते हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: उस समय आपको आपके ऊपर जिम्मेदारी एक और व्यक्ति की भी होती है,
1: हाँ जी
0: तो यहाँ किन चीज़ों में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें?
1: सर रेस्क्यू में ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक और व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, तो सबसे मेन होता है कि सही टाइम पे डिसीजन लेना।
0: जी
1: अगर हम जब ऐसे इलाकों में जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम कम्युनिकेट कर पाएं आपस में। अगर जैसे मान लीजिए मैं रेस्क्यू में जा रही हूँ तो मेरी जो बैकअप टीम है, हो सकता है वो बेस कैंप में होगी, तो आपस में एक जो कम्युनिकेशन रहेगा वो क्लियर होना चाहिए। हमारे पास सही वेदर रिपोर्ट होनी चाहिए, जो रेस्क्यू के लिए जो दूसरी टीम आ रही है, या कई बार हम हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन होना। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो रेस्क्यू के टाइम पे रहते हैं।
0: और नॉर्मल क्लाइंबिंग के दौरान आप को सिर्फ क्लाइंब करना होता है?
1: सर तब भी रिस्क तो उतना ही रहता है और चैलेंज उतने ही रहते हैं, क्योंकि जब आप क्लाइंब कर रहे हैं तो कई बार आप एक टीम को लीड कर रहे होते हैं, अब एक्सपीडिशन आप लीड कर रहे हैं तो बाकी सभी लोग आप पर निर्भर हैं, आपका कोई भी एक डिसीजन उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता
0: थ्रेटनिंग हो
1: है।
0: सकता है जी, तो अब यहाँ स्थिर दिमाग से भी काम करने की
1: स्थिर
0: जरूरत।
1: दिमाग से आपको जल्दी डिसीजन लेना है और आगे उसको भविष्य को देखते हुए कि आगे इसका क्या असर होगा
0: असर होगा
1: उसको
0: तो
1: देखते हुए।
0: मतलब ये है कि क्लाइंबिंग में सिर्फ चढ़ना ही नहीं होता, दिमाग को भी चलाना पड़ता है।
1: बिल्कुल सर, जो अगर माउंटेनियरिंग है और इसके साथ में और भी जितने भी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं,
0: जी
1: वो एक टाइम के बाद में आपकी बॉडी तो थकने लग जाती है, तो जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है आप उसी के बल पे चलते हैं, और अगर वो नहीं होता तो कई बार बहुत दिक्कत आ जाती है।
0: जी जी जी बहुत सही बात आपने कही। अच्छा एक चीज और भी जब हम देखते हैं तो सिमिलर सी एक चीज होती है ट्रैकिंग, जिसको हम कहते हैं
1: जी जी
0: ट्रैकिंग एक सिंपल पार्ट हो गया माउंटेनियरिंग
1: हाँ
0: का,
1: जी
0: तो ट्रैकिंग में और माउंटेनियरिंग में दोनों में अगर हम एक डिफरेंस की बात करें तो वो क्या कह सकते हैं?
1: सर सबसे मेन बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप ट्रैकिंग या हाइक के लिए जा रहे हो तो आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जगह अगर आप माउंटेनियरिंग के पर्पस से जा रहे हैं तो वहां पर आपको ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी।
0: जी
1: अब ट्रैकिंग जैसे अगर अपन जयपुर की ही बात करें तो आसपास जितने भी अरावली में अपने एरियाज हैं, आप वहां पर अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। बस उस एरिया के बारे में आपको एक बार देखना है कि वहाँ किस तरीके के जंगली जानवर आते हैं, नहीं आते हैं, उनसे कैसे सुरक्षा करनी है, बस उतना ही। लेकिन अगर हम किसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ का एल्टीट्यूड देखना होगा, वहाँ पे कुछ टेक्निकल क्लाइंब है तो उसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट चाहिए होंगे, उस हिसाब से क्लोदिंग चाहिए होगी, उस हिसाब से ही मेडिकल किट, वो सब चीज़ें होंगी।
0: जी
1: तो माउंटेनियरिंग एक मोर टेक्निकल की तरफ चला जाता है और ट्रैकिंग या हाइकिंग एक मोर फन वाला साइड हो जाता है, जहां पर आप
0: जी जी
1: केवल दोस्तों के साथ में आनंद लेने के लिए जा रहे हैं।
0: जी आपने अभी बताया कि इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो ये इन इक्विपमेंट्स में महत्वपूर्ण जो उपकरण हैं माउंटेनियरिंग के लिए वो क्या हैं और किस प्रकार से उनको

0: उपयोग में लेने के समय ध्यान रखा जाना चाहिए?
1: अच्छा, जैसे मेन अगर इक्विपमेंट की बात करें तो रोप होती है हमारे पास, क्लाइंबिंग रोप, उसको लाइफ लाइन ऑफ माउंटेनियर बोलते हैं कि आप कभी भी जा रहे हैं तो हम रोप अप होके जाते हैं ग्लेशियर में, जबकि जब ग्लेशियर वॉक होता है, ताकि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो क्रेवास में गिर जाए तो उसको बाकी लोग अरेस्ट कर पाए, उसका रेस्क्यू कर पाए. इस तरीके से हमारे पास आइस एक्स होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी रास्ता चेक करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, आप किसी वॉल को क्लाइंब कर रहे हैं उसके लिए. फिर हमारे आइस क्लाइंबिंग बूट्स आ जाते हैं, वो हमारे को बहुत ठंड में और उससे प्रोटेक्ट करते हैं, स्नो से प्रोटेक्ट करते हैं. इसी तरीके से कैराबिनर होते हैं हमारे पास, जुमार होता है, जुमार एक असेंडिंग डिवाइस है, उससे अगर जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो हेल्प करता है. क्रैम्पॉन्स होते हैं हमारे को, वो बर्फ में चलने में हमें आसानी प्रोवाइड करवाते हैं. इसी तरीके से सर बहुत सारे इक्विपमेंट हो जाते हैं.
0: वो डिपेंड करता है कि आप
1: हम किस तरीके की क्लाइंबिंग
0: जा रहे हैं. आप जा रहे हैं लाइक आप रॉक्स पर चढ़ रहे हैं तो उसमें आपको हुक्स की भी
1: हाँ जी सर, रॉक पे चढ़ रहे हैं तो हमारे पास रॉक क्लाइंबिंग शूज होंगे, वो शूज अलग तरीके के होते हैं.
0: इक्विपमेंट का डिसीजन तब लिया जाता है जब आप किस तरह की क्लाइंबिंग पर जा रहे हैं.
1: जी सर, जैसे हम कोई भी एक्सपेडिशन प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम जगह देखते हैं कि हमें कौन से एरिया में जाना है. फिर उस एरिया में वेदर कंडीशन कब किस मौसम में कैसी रहती हैं, अभी इस साल क्या वेदर प्रेडिक्शन रहेगा वहाँ पे. फिर उस एरिया की वाइल्ड लाइफ को हम स्टडी करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वहाँ पे स्नो और आइस का क्या टाइप है, रॉक का क्या टाइप है, इस तरीके के. और फिर हमारे पास टीम मेंबर्स कैसे जा रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं या सारे बिगनर्स हैं. इन सब चीजों का डिसाइड करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि हमें अब क्या क्या जरूरत रहेगी, हमें कैसे इक्विपमेंट्स ले जाने चाहिए, हमारी क्लोथिंग की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये सब चीज़ उसके बाद डिसाइड करते हैं.
0: जी निवेदिता जी, जानना आपसे चाहेंगे, अभी तक आपने 6000 फीट तक की ऊंचाई की आपने लेह लद्दाख में एक्सपीडिशंस पे आप गई हैं, आपने एक्सप्लोर किया है ऐसी जगह को. हर एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका एक सपना होता है. हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए माउंटेनियर आप कौन सी एक्सपीडिशंस पे जाना चाहेंगी अपने आने वाले समय में?
1: सर ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीडिशंस हैं जिन पे मैं जाना चाहूंगी. जैसे आपने बात करी कि हर स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है कुछ ना कुछ, तो वैसे ही हर माउंटेनियर एक ना एक बार ही सोचता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है या उसे क्लाइम करना है. ऐसे ही अपने 8000 मीटर की लगभग 14 चोटियां हैं तो इस, और भारत में तो बहुत सारे हैं अगर हम देखें तो. एक हिमालय का बहुत बड़ा भाग हमारे पास है और इसमें बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहाँ पे लोगों ने कभी क्लाइम भी नहीं किया है. तो ऐसी बहुत सारी चोटियां हैं जिन पे मैं जाना चाहूंगी.
0: तो उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग्स हैं उन एक्सपीडिशंस पर जाने के लिए, आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही हैं और प्लान कर रही हैं?
1: जी सर, जैसे अभी अपन माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8000 मीटर के करीब है. तो जैसे अभी मैंने 6000 मीटर तक की पीक क्लाइम कर लिया है तो अभी मेरा प्लान है कि इस साल मैं कोई 7000 मीटर की पीक करूं ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी बॉडी उस एल्टीट्यूड तक कैसे काम कर रही है. फिर ऐसे करके धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्लाइम करते हैं तो सक्सेस के चांस भी बढ़ जाते हैं और सीखने को भी ज्यादा मिलता है. अगर बजाय अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट कोर्स करके मैं डायरेक्ट 8000 मीटर की चोटी पर जा रही हूँ तो हो सकता है मुझे पता ही नहीं होगा मेरी बॉडी वहाँ एडजस्ट करेगी नहीं करेगी और वो अलग तरीके के चैलेंजेस होंगे.
0: जी निवेदिता जी, आपने बहुत सही बात कही. और ये बताइए कि आप एक माउंटेनियर हैं तो हर एक स्पोर्ट्स के अंदर स्पेसिफिक डाइट्स की जरूरत होती है.
1: हाँ जी.
0: तो एक माउंटेनियर के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है या जहाँ वो एक्सपीडिशन पर जा रहे हैं उस हिसाब से डाइट प्लान किया जाता है?
1: सर जब एक्सपीडिशन पे जा रहे होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अपन जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन करते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी बहुत स्लो हो जाता है. तो वहाँ पे आप जितना सिंपल फूड लेंगे जिससे जो हमारे को जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वो ज्यादा बेहतर रहता है.
0: जी.
1: तो हम लोग ऐसे और मोस्टली ये होता है कि जब आप इतने एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो इतनी सुविधा नहीं होती है कि हम वहाँ पे रोटी सब्जी बना सकें. तो वहाँ पे मोस्टली प्रेफर किया जाता है दाल चावल खाना क्योंकि उसमें पूरा प्रोटीन भी आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है और वो आपको पूरा पोषण भी देता है. इसलिए
0: आपने बताया कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं ये एक्सपीडिशन लगभग 10 से 15 दिन या 20 दिन का भी हो सकता है.
1: बिल्कुल.
0: तो इस दौरान जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर पहुंचते जाते हैं तो आपकी बॉडी की प्रोटीन की और बाकी सारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है. तो क्या उन एल्टीट्यूड से वापस लौटने के बाद में उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए कुछ समय देना पड़ता है?
1: हाँ जी सर बिल्कुल. अगर आप एक 10 से

0: 15 दिन के एक्सपेडिशन पे जा रहे हैं तो जनरली ये होता है कि आपका 3 से 4 kg वेट लूज हो जाता है.
1: जी जी
0: तो जब आप नीचे आते हैं तो ज़रूर आपको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है और एक्स्ट्रा डाइट की भी ज़रूरत रहती है ताकि जो भी लॉस हुआ है उसको आप वापस गेन कर सको. तो एक रिकवरी का पीरियड रहता है.
1: जी निवेदिता जी, आपसे बहुत बातें हमने की, जाना आपसे माउंटेनियरिंग के बारे में. चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, अगर वो माउंटेनियरिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: सर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसका भी इंटरेस्ट है कि उन्हें माउंटेनियरिंग में जाना है तो कम से कम वो एक बेसिक कोर्स जरूर करें. जो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है उसमें आपको सिखाया जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी पहाड़ों पे जो चैलेंजिंग होंगी तो आपको उनको कैसे डील करना है. और आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है इस फील्ड में आने के लिए. कई बार ये होता है कि हम बिना कोर्स किए ही एक्सपेडिशंस पे चले जाते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है.
1: जी जी,
0: तो एक बार कोर्स ज़रूर करें, मैं बस यही सलाह देना चाहूँगी सबको.
1: निवेदिता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और माउंटेनियरिंग के बारे में जो आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, निश्चय ही सुनने वाले लोगों को इससे फायदा होगा और जो इसमें जाना चाहते हैं उन्हें लाभ होगा. आपको बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए, मौका देने के लिए.
2: अभी आप सुन रहे थे पर्वतारोही निवेदिता कौर से जितेंद्र वर्मा की बातचीत. अब हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए फिल्म संगीत सुनिए। आइए इसमें सबसे पहले सुनते हैं पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत।

आई कार्यक्रम का अगला गीत सुने निकाह फिल्म से। गीत को गाया महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सलमा आगा और साथियों ने। गीत लिखा हसन कमाल ने और संगीत तैयार किया रवि ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के

निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।